फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार।

0: मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू

0: ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आपके अपनी रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर FM एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इसमें आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं समूह स्वरों में ये मातृ वंदना।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम अर्चना। और आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं संत मीराबाई की ये रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित गोविंद प्रसाद भावदीप जयपुर वाले ने। आवाज है सुमन कल्याणपुर की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम अर्चना का। और आइए इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं उषा सेठ की आवाज में ये भजन। इस भजन को संगीतबद्ध किया है मुरली मनोहर स्वरूप ने।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। जिस तरह आप आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना का, और आइए इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं ज्योतिका रॉय की आवाज़ में ये रचना।

अभी आप ज्योतिका रॉय की आवाज़ में संत सूरदास जी की ये रचना सुन रहे थे और इसी के साथ कार्यक्रम अर्चना यहीं पर संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिएगा कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के तहत हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

30 मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। इसका आज हम आपको 43वां भाग सुनवाएंगे। वाणी जयराम का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा सुबह 6:40 पर। सुबह सुबह हमारा दैनिक वैचारिक चिंतन का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7 बजे। सुबह 7:05 का समय होगा कार्यक्रम कृषि संगीत का। इसमें हमारा आज का विषय है फूलों की खेती से लाभ। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आर के पटेल। मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के पसंद की फिल्मी गीत सुनवाएंगे सुबह 7:20 पर। कार्यक्रम संगीत सरिता होगा सुबह 7:45 पर। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। जिले की चिट्ठी सुनिएगा भोपाल केंद्र से सुबह 10 बजे। श्रोताओं के फरमाइशी बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने का पुनः प्रसारण होगा सुबह 10:05 पर। उमंग NCERT द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। शाम 5:02 पर युवा साथी अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी सुन सकते हैं। शाम 5:30 का समय होगा संगीत सरिता कार्यक्रम का। शाम 6 बजे फिल्मी गीतों से सराबोर कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं। गीत गजल और कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता होगा।

शाम 6:15 पर। फिल्मी गीतों से सराबोर कार्यक्रम सदाबहार गीत आप सुनिएगा शाम 6:30 पर। बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा शाम 6:45 पर। खेती गृहस्थी पर आधारित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुन सकते हैं शाम 7:20 पर। रात्रि 8 का समय होगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का, संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर। रात्रि 9 श्रोता अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत में। रात्रि 9:30 पर मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी, और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। इसका आज हम आपको 43वां भाग सुनवा रहे हैं। गायक स्वर है वाणी जयराम का।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहाँ मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिव जी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिव जी ने उन्हें अपनी बाईं ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ सुन रहे थे। इसका आज हमने आपको 43वां भाग सुनवाया। गायक स्वर था वाणी जयराम का। यह आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए। अब सुनिएगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: मतवारे बादल छा गए, झूम झूम मतवारे बादल।

झूम झूम मतवारे बादल छा गए, झूम झूम मतवारे बादल छा गए। मदम जी को याद झूम झूम मतवारे बादल छा गए, झूम झूम मतवारे

0: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला नगमा अभी आपने सुना गीता दत्त और राजकुमारी की आवाजों में। इस गीत को हमने चुना था सुहागरात फिल्म से। गीत को लिखा था केदार शर्मा ने और संगीतबद्ध किया था स्नेहल भटकर ने। और हम आपको बता दें ये फिल्म रिलीज हुई थी 31 दिसंबर 1948 को।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओ ये आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। और आइए भूले बिसरे गीतों में से एक और भूला बिसरा गीत आपकी यादों को ताजगी देगा। बम्बई का चोर फिल्म का ये गीत है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को शब्द दिए हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया है रवि ने।
4: हल्लो हल्लो जी,
5: कहो क्या है जी,
4: प्यार के सिखा दो मुझे ए बी सी।
5: सुनो सुनो जी,
4: जल्दी कहो जी,
5: बच्चे हो ना।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: श्रोताओ, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM बैंड 102.6 MHz पर, जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आइए, भूले बिसरे गीतों में से एक गीत हमने चुना है चांद मेरे आजा फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, शब्द दिए हैं प्रेम धवन ने और चित्रगुप्त का ये संगीत है। मुरली मूवी टोन के तले ये फिल्म रिलीज हुई थी।

और लीजिए श्रोता, इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं ढाके की मलमल फिल्म से ये गीत, शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाजों में। जानिसार अख्तर ने इस गीत को लिखा है और उपी नैयर ने इसका संगीत तैयार किया है और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1 जनवरी 1956 को।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। आपसे थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संस्कृत में समाचार।

के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाए।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए, अब सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सुबह। एक और नई सुबह के साथ हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है। श्रोताओं, ये सच है कि यदि किसी व्यक्ति के पास हुनर है तो उस व्यक्ति की हर जगह कद्र होती है। वो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। वो अपने हुनर का इस्तेमाल करके दुनिया में अपना नाम कमा सकता है, लेकिन एक अच्छे सच्चे हुनर के साथ। वरना आदतें तो ऐसी भी होती हैं जिससे उसे तो फायदा हो सकता है परंतु दूसरों को नुकसान हो सकता है। जो अनुभव मेहनत और ईमानदारी से हासिल किया जाता है और जिसका इस्तेमाल भी अच्छे कामों के लिए और लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, उसके द्वारा नाम कमाने में बड़ी कामयाबी हासिल होती है। व्यक्ति में इतनी तो काबिलियत जरूर होना चाहिए कि उसके हाथ में कोई ना कोई हुनर हो। जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता और बिना मेहनत किए अपने जीवन में सब कुछ हासिल करना चाहता है, उस व्यक्ति की समाज में कोई कद्र नहीं होती है। उस व्यक्ति को सब लोग एक बोझ के जैसा समझने लगते हैं। आज के समय में हमारे सामने आ रही संभावनाओं को पहचानने और अवसर का लाभ उठाने के लिए सबसे जरूरी है अपने अंदर छिपे हुनर को पहचानने की और उससे लाभ उठाने की। खुद को कमतर समझने की बजाय अपने हुनर को पहचानें, उसे तराशें, तभी आप बदलते वक्त के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर ऐसा देखने सुनने में आता है कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है परंतु उसे उतनी कामयाबी नहीं मिलती जितनी वो सोचता है। अगर ऐसे लोगों पर मनोवैज्ञानिक नजरिए से विचार किया जाए या फिर ऐसे लोगों के मन में झांकने का प्रयास करें तो यही लगता है कि ऐसे लोग बेशक अपनी नजरों में खुद को

0: है और संचालनालय स्तर से जब टारगेट आते हैं तो प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर उन्हीं किसान भाइयों को अनुदान का लाभ देते हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपना सबसे पहले करवाया। ये प्रक्रिया प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से शुरू होती है। किसान भाई उसका आवेदन कर सकते हैं। तो हमारा किसान भाइयों से ये आग्रह अनुरोध है कि उनको पुष्पों की खेती में अनुदान का लाभ जो है प्राप्त हो सके।
1: फूलों की खेती से लाभ, इस विषय पर अभी हमें जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर आर के पटेल। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि संकेत संपन्न होता है। यह आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM एंड 102.6 MHz पर सुबह के 7:10 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, 3 दशक से जारी सरदार सरोवर विवाद का सर्वसम्मति से हुआ समाधान। आज भिंड में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रदेश के 9 जिलों में अति भारी और 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 4वां मुकाबला आज ब्रिस्टल में होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लेने और दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। वे मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और इसे अविस्मरणीय बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वित्त वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के वृद्धि अनुमान वैश्विक अनुमानों से 2 गुने से भी अधिक हैं। रिपोर्ट में इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3% बताई गई है। इसमें अगले वर्ष 3.4% की वृद्धि की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 4थी नवीन विनिर्माण इकाई का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी प्रगति को नई दिशा दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कंपनी प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए संबोधित किया।
1: 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग किसान कल्याण वर्ष में किसान की इंडस्ट्री हो या रेलवे, आप बहुत तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग प्रकार की दुनिया में पहुंच रही है। ऐसे में हमारे उद्यमी भागवती ब्रदर्स ने अपनी रेल के विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज बनाने का और रेलवे कोच बनाने तक का भी जो संकल्प लिया, हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से 272 करोड़ के अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली सभी प्रकार के वाहन साधनों की एक बड़ी इंडस्ट्री का भी हमने लोकार्पण किया। बीते 10 दिन के अंदर लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग अलग प्रकार के कामों का भूमिपूजन लोकार्पण किया है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कल कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लगभग 3 दशक से जारी पुनर्वास एवं पुनर्बसाहट व्यय विवाद का सर्वसम्मति से समाधान हुआ है। इस निर्णय से मध्य प्रदेश पर पड़ने वाले वित्तीय भार में उल्लेखनीय कमी आएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 24 जून से संचालित 15 दिवसीय प्रदेशव्यापी सेफ क्लिक साइबर सुरक्षा 2.0 जन जागरूकता अभियान का कल समापन हुआ। भोपाल में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि 3 पूर्व प्रमुख चुनौतियों, साइबर अपराध, नशे के विरुद्ध जन जागरूकता और सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सेफ क्लिक तथा नशे से दूरी है जरूरी व्यापक जन जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं।
3: वर्ष 2025 में हमने सेफ क्लिक अभियान साइबर जागरूकता का चलाया था और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखे गए थे। उसके पश्चात प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट में बहुत हद तक रोक लग गई थी, तो चूंकि साइबर फ्रॉडस्टर्स लगातार अपनी मॉडस ऑपरेंडी, अपनी कार्यप्रणाली चेंज करते हैं, तो उनसे बचाव के लिए पब्लिक को जागरूक करना महसूस किया जा रहा था। सेफ क्लिक 2.0 का 24 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था और 15 दिवसीय ये अभियान सारे जिलों में बहुत ही लगन से मेहनत से चलाया गया। इसमें कई विभाग, कई संगठन, कई एनजीओस को हमने जोड़ा और करोड़ों की रीच इसकी रही।
0: 15 दिवसीय इस अभियान का समापन समारोह खंडवा के पुलिस कंट्रोल रूम में भी आयोजित किया गया। वहीं मंडला, आगरमालवा, झाबुआ समेत अन्य जिलों में भी अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार और अद्यतन डाटा सेंटर 3.0 परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार मध्य प्रदेश स्टेट डाटा का आधुनिकीकरण, आईटी एवं डिजास्टर रिकवरी क्षमता विस्तार तथा संबंधित नॉन आईटी अवसंरचना विकास किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से भोपाल में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर 12 दिसंबर 2012 से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उप निरीक्षक एवं सूबेदार भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस को 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग के 436 पुलिस अधिकारी मिलने जा रहे हैं। मंडल द्वारा 7 जुलाई को अंतिम परीक्षा परिणाम अपनी वेबसाइट पर घोषित किया गया, जिसमें 87% पदों का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें कुल 436 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें 313 पुरुष एवं 123 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराने के लिए 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, संशोधन, दस्तावेज सत्यापन, सीट आवंटन संबंधी मार्गदर्शन तथा शुल्क भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को यह मैच जीतना ही होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार कल पन्ना, छतरपुर और खंडवा सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, रतलाम, आगरमालवा, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ और निवाड़ी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसी के साथ विदिशा, उज्जैन, शाजापुर और मंदसौर सहित 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठकें जिला पंचायत सभागार में 13 से 15 जुलाई और 21 से 24 जुलाई तक होंगी। गुना की तहसील कुमराज के ग्राम बिरियाई में जिला प्रशासन द्वारा ग्राम चौपाल और सामाजिक संवाद सह रोजगार उन्मुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। मानसून की सक्रियता के चलते जबलपुर के रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बरगी जलाशय में बीते 5 दिनों में बांध का जलस्तर 3 मीटर बढ़ गया है। 31 जुलाई से पहले बांध के गेट खोले जा सकते हैं। शहडोल संभाग कमिश्नर ने ग्राम पंचायत मोहतरा के पोषक ग्राम चुनपथरी स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने इंदौर रेजिडेंसी कोठी पर आयोग मित्रों के साथ मानवाधिकार संरक्षण सहित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मंडला जिले में 9 जुलाई को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सांची जनपद के ग्राम सनखेड़ी में 2,90,00,000 रूपये की लागत से बने क्षमता के नए उपकेंद्र का लोकार्पण किया। सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे और बैतूल कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने प्रभात पट्टन तहसील के ऐतिहासिक शेरगढ़ किले और वर्धा डैम पहुंचकर सुरक्षा एवं पर्यटन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आप मोबाइल पर हमारे आकाशवाणी सागर का लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए, अब आपकी खिदमत में पेश है श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत।

कार्यक्रम मनचाहे गीत की ये पहली पेशकश अभी आपने सुनी। प्यासा सावन फिल्म से ये गीत हमने चुना था लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। इस गीत को संतोष आनंद ने शब्द दिए थे और इसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और अनुरोधकर्ता आप सभी लोग थे। ये पत्र में मिला है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, और कुछ व्हाट्सएप भी मिले हैं शिवाजी चौक कटनी मध्य प्रदेश से। अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू, सोना मोना, हनी, यश और इनके मम्मी पापा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता, गीता, ग्राम पारा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोड़, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी।

0: रानी मानिकपुरी, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका बोर खोरवाल। और लीजिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी
0: कार्यक्रम मंचाई गीत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको बता दें ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM 102.6 MHz पर। लीजिए मंचाई गीत का अगला मनचाहा गीत आप सभी की पसंद पर है, रंगीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ये पत्र हमें मिला था और कुछ व्हाट्सएप भी हैं, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, और गांव बिठोड़ा भोयर जिला वाशिम महाराष्ट्र से योगीराज मस्के, श्री हरि मस्के, इंदुमती, कविता मोहन, कुशल विशाल मल्हार, श्याम गोविंद मस्के, और सहसपुर लोहारा दानिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेम प्रभा, पुष्पाराज सूरज राजपूत, और राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाहजहापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि राक्षित, चितरंजन कमल, उमेश सरोज, आरती रेखा, रितिका ऋचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत, और बेनी पट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। आप सभी ने सुनना चाहा है दर्द फिल्म में उमा देवी की आवाज़। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया है नौशाद ने।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
2: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
3: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
4: बात बन जाए।
3: 287 मेरी चाय।
5: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर, जिस पर आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत का। और आइए देखिए मनचाहा गीत आपका अगला कौन सा है। प्यार का मौसम फिल्म से ये गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को लिखने वाले हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतबद्ध करने वाले हैं आरडी बर्मन, और पसंद करने वाले आप सभी लोग हैं। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली, कुछ व्हाट्सएप भी हैं। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता, अनिकेत चौहान। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर, काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानो कृष्ण, श्रीमती छिंदो और साथ में इनके हैं प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल और चटकू मटकू।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए कार्यक्रम मनचाहे गीत के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं यादगार फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की ये तर्ज है और पसंद करने वाले आप सभी लोग हैं। ये पत्र हमें मिला है सागर से, राजेश्वरी तिवारी, दीनानाथ रावत, शिवम मिश्रा, आशा मिश्रा, डॉक्टर आयुष तिवारी, लड्डू अथर्व तिवारी, यशस्वी तिवारी, राजेश मिश्रा, प्रदीप तिवारी। और ये खत है नेपाल पहले सागर मध्य प्रदेश से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, शिवा शिवांशु, यश अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश कटौदिया, सुजीत, पंडित रमाकांत दुबे और कुछ व्हाट्सएप भी हैं। गांव खिरिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, राजपाल अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजारनिया, गाँव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक, शिव मंदिर हरिनगर जिला दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब सागर सदर सागर बाजार रोड मुंगो सापुर, यहां से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी, गांव कलमाड़ी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति।

और श्रोता इसी के साथ कार्यक्रम मनचाहे गीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आपको बता दें आज का ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का सफर आपने तय किया अपने रेडियो मित्र मासूम आलम के साथ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.6 MHz पर। लीजिए अब सुनिएगा गीत, गजल और कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता।

0: अभी आपने ये जो गीत सुना इसे आवाज़ दी थी लता आशा भोसले ने। इस गीत को लिखा था कमाली ने और संगीतबद्ध किया था जयदेव ने।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। और आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं ये गजल। इस गजल को आवाज और संगीतबद्ध किया है दिलराज कौर ने और इस गजल को लिखा है कृष्ण अजीब ने।

यह आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और लीजिए इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं जानी बाबू कव्वाल की आवाज में ये कव्वाली। इस कव्वाली को लिखा है नजर एटवी ने।

और श्रोता इसी के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे समाचार प्रभात।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने

0: निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।

0: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से PF खाते में

0: 8% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको बता दें, समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए, अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

घर बर से सबरी घर बर से हाँ सबरी घर बर से बेदोरे घर बर से कुबजा घर बर से अरे कुबजा घर बर से जब

घर बरसे बेदोरे घर बरसे सबरी घर बरसे बेदोरे घर बरसे हाँ सबरी घर बरसे बेदोरे घर बरसे कुबजा घर बरसे।

0: कार्यक्रम लोक संगीत की ये पहली प्रस्तुति, ये लोक भजन अभी आपने सुना सुरेश चंद्र तिवारी की आवाज में।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं महेश कुमार अनुरागी की आवाज में ये मल्हार गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओ, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर लीजिए। इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं ये जल बचाओ बुंदेली लोकगीत। इसे आवाज दिए राम सिंह राय ने।

और श्रोता इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की

बाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहाँ युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारी

बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहाँ अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहाँ कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहाँ निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहाँ असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहाँ दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहाँ की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर

रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमन सिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए सुनिए।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में बार बार देखो फिल्म का गीत। कुमार ने उसे लिखा था, अमाल मलिक का संगीत। और चित्रलोक में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और परहेज की, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमें परहेज लंबे समय तक करना पड़ता है और कभी कभी जीवन पर्यंत करना पड़ता है। और ऐसे में कई बार ऐसा लगता है, बिल्कुल मन नहीं मानता और ये लगता है कि क्यों हम ये सारी चीजें नहीं खा रहे हैं या क्यों हमें ये सारी चीजें करना है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए परहेज की आवश्यकता है और कभी कभी वो इससे उकता जाते हों, तो डॉक्टर की सलाह लेकर आप उन्हें कभी कभी उनकी पसंद की चीजें सप्ताह में या महीने में एक बार दे सकते हैं। ऐसा कई बार डॉक्टर अगर बहुत ज्यादा ही परेशानी की स्थिति ना हो तो वो ऐसा कहते हैं कि आप उन्हें इतनी क्वांटिटी में वो चीजें दे सकते हैं, तो उस ही मात्रा में ये सब चीजें आप दे सकते हैं। और जीवन यूं ही उन पर काफी कड़ा है, तो आप थोड़ा नरमी रखिए उनके साथ, समझाइए मत उन्हें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप समझाने पर जाते हैं तो मामला जरा बिगड़ सकता है। उसकी बजाय उन्हें सुनिए उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बेहतर मदद साबित होती है। और अगर हो सके तो परिवार के दूसरे सदस्य भी परहेज में सहयोग करें, लेकिन कुछ ऐसा परहेज हो जिससे दूसरे परिवार के सदस्यों को करने से उन्हें स्वास्थ्य की परेशानियां हो सकती हैं तो ना करें, पर जो भी परहेज उनके साथ आप कर रहे हैं उसे एहसान की तरह मत दिखाएं। तो जितनी सहजता से ये बातें होंगी उतनी ही आसानी भी होगी।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत आपने सुना और इरशाद कामिल ने से लिखा, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में बात हो रही स्वास्थ्य और परहेज की। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें परहेज की आवश्यकता होती है, तो अगर आपको परहेज करना आवश्यक हो गया हो तो इसे मन पर हावी मत होने दें, क्योंकि कई बार लोगों की बातों का केंद्र बिंदु ही ये बात बन जाती है कि ये सारी चीजें हम नहीं खा सकते, ये सब चीजें हम नहीं कर सकते हैं, जबकि आप उन चीजों की ओर भी ध्यान दे सकते हैं जो आप कर सकते हैं या जो आप खा सकते हैं, जो चीजें आपके लिए अनुकूल हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि मैं पता है कि ये बात तो उस ज्ञान की तरह लगेगी जो कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन काम तो यही आता है। तो एक और ज्ञान हम देते चलें कि भाई मन के अनुसार आप मत चलिए, मन को अपने अनुसार चलाइए, क्योंकि मन आपका है, आप मन के नहीं हैं। तो ये कीजिए और देखिएगा फिर आपका मन कितना खुश रहता है।

थोड़ी खाली सी जगह। बैंग बैंग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजें, अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत। और हमारा स्वास्थ्य भी कुछ इस तरह से थोड़ी सी कहते परहेज मांगता है या थोड़ा सा हमारा ध्यान चाहता है ताकि हम उसी ओर जाएं और अच्छा स्वास्थ्य हमारा बना रहे तो हम भी खुश रहेंगे। और इस परहेज को छोड़ने की जब बातें हम करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमें आज कुछ भी नहीं करना, ये सारी चीजें नहीं सोचनी है, तो वो चीजें जो हैं बाद में जाकर परेशान तो करती ही हैं। तो क्यों ना खुशी खुशी कीजिए, भाई परहेज तो करना ही है, तो रोकर कीजिए या हंसकर कीजिए। तो बेहतर है कि भाई अच्छे स्वास्थ्य की ओर अपना अच्छा कदम बढ़ाइए और हंसते खिलखिलाते बढ़ते हुए चलिए। तो आज ही कीजिए शुभारंभ इस बात का।

काई पोचे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रुति पाठक, दिव्य कुमार की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और इतनी देर हमने बातें की अच्छे स्वास्थ्य और उसके लिए किए जाने वाले परहेज की, तो यकीन मानिए आपका और हमारा हाल एक ही है, पर एक दूसरे को इस तरह संभालते हुए आप और हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ते जाएंगे। और गीतों का साथ तो है ही, तो आज जो भी आज से अपने अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये गीत, क्योंकि आपकी तरह ही हम भी अच्छे स्वास्थ्य के फैन हैं।

नक्स अजीज की आवाज में फैन फिल्म का गीत आपने सुना, वरुण ग्रोवर के बोल, विशाल शेखर का संगीत। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, दिन भर जहां भी रहें रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। और आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीर साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज को उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पर तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी।

0: करते हैं तो।
1: गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हो या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियाँ दी, कहानियों से रुलाया हंसाया।
2: बवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जानना कलियन की मुस्कान है। बवरा बड़ा नादान।
1: गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है।

आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ, वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे स्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कहा कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को बात समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे। देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थी। सरल इतनी थी कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थी। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थी कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुंचाया करती थी और 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए।

दत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए, जैसे फिल्मबाजी में उन्होंने दो नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।

0: बैठ बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो जानते हो रास्ता कहां जाके खत्म होता है?
1: यही इसी जगह।
2: वाह वाह, क्या कहने सादर जवाबी।
1: आपको और कुछ पूछना है?
2: हाँ बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ के रखा है? यहां अच्छो अच्छो के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो।
1: आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूं।
2: देखो मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया और ना ही मैं तुम्हारे सुख को बदला लेना चाहता हूं।
1: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
2: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
1: कोई नहीं।
2: सुनो, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फॉर्म छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा।
1: मुझसे कहे कि इतनी हमदर्दी समझा?
2: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है।

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, वैसी ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया।

संगीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग की खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रस्ता खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कराती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे वीके मूर्ति से बोले, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूँ क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा, तो फिर तो बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है, साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एम्बियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं।

0: साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक है में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमीय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहाँ देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो।
2: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।
1: अबे तू जाता है कि नहीं? जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हमें तक उठने की कोशिश करता।
2: नौकर जरूर हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
1: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की? कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है? तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
2: वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल किले होकर बातें कर रहे हैं और कल जब यही वक्त पलटे।
1: अबे जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला। पहले किसी काबिल हो ले फिर आंख मिलाकर बात करना। चल दफा हो जाते।
0: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपिनियर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। चौदहवीं का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने ये गीत।

0: इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
1: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ

जी पूछते थे कि आपको कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है आपको, डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या का किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी मन और बढ़िया दिखती थी।

0: बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है।
1: विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट।
0: वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से ये गाना लिखवाया गया।
2: मालिश, तेल मालिश, जंपेरिया, मालिश, तेल मालिश, जंपेरिया।

0: सुन इस चमकी में बड़े बड़े घुन, सुन सुन सुन अरे बेटा सुन इस चमकी में बड़े बड़े घुन, लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आजमाए काहे घबरा।
1: फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहाँ आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतनी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई।
2: गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया,

0: पे तरस खा के पी गया, ठुकरा रहा था मुझको।
1: तो ये शायर भी है?
2: शायर? अरे तू देखती रही उसकी कुछ पांच से नगमे उसके सर के पीछे पड़ी है।
0: ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गया।
3: फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे।
4: यहाँ उस

0: आने लगी शाम रे।
1: आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई।

इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

जिले की चिट्ठी आलेख मनोज गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। दतिया जिला इन दिनों राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरे जिले में जोर शोर से चल रही हैं। राजनीतिक दल गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक पहुंचकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, फ्लैग मार्च, मतदान केंद्रों की तैयारियों और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 साल पुराने बैंक एफडी घोटाले के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी सदस्यता रद्द होने से उपचुनाव कराना जरूरी हुआ। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। नामांकन जांच 14 जुलाई तक और नाम वापसी 16 जुलाई तक की जा सकती है। मतदान 30 जुलाई को होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही नतीजे की घोषणा हो सकती है। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक बीते दिनों आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं बारिश की खबर का। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही दतिया जिले के किसान खरीफ सीजन की खेती में जुट गए हैं। जिले में धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग और तिल की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। कृषि विभाग किसानों को उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों की सलाह दे रहा है। समय पर बारिश से किसानों के चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा है। हालांकि वे अच्छी बारिश के सिलसिले के बने रहने की उम्मीद लगाए हुए हैं। दतिया जिले में 1 जून से अब तक कुल 494 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 264 मिलीमीटर कम है। दतिया जिला प्रशासन उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ अलग अलग विभागों के माध्यम से राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और जन कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा में भी जुटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, विद्यालयों की व्यवस्थाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। बीते मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक श्री मयूर खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च शहर के मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के सामने चौराहे से होते हुए गंज, राजगढ़ मार्ग, टाउन हॉल, बड़ा बाजार, पटवा तिराहा, किला चौक, दारूगर की पुलिया, बिहारी जी मंदिर और तिगैलिया होते हुए प्रमुख मार्गो एवं संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी दतिया की पहचान लगातार मजबूत हो रही है। विश्व प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जिले में सामाजिक जनजागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। पौधरोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम, युवा गतिविधियां तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के जागरूकता अभियान लोगों तक पहुंच रहे हैं। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा जिला पुरातत्व, पर्यटन तथा संस्कृति परिषद दतिया एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में जिले के समस्त शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों द्वारा अपनी टीम का पंजीयन कराया जा सकेगा तथा इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में पंजीयन के लिए 25 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। प्रतियोगिता 7 अगस्त 2026 से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। दतिया के नागरिकों की अपेक्षाएं आज भी विकास, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निर्बाध बिजली, पर्याप्त पेयजल और सुरक्षित वातावरण को लेकर बनी हुई हैं। उपचुनाव के इस दौर में मतदाता केवल राजनीतिक वादों से आगे बढ़कर विकास के ठोस कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होंगी, लेकिन इसके साथ साथ खेती, विकास कार्य, प्रशासनिक सक्रियता और सामाजिक कार्यक्रम भी जिले की प्रगति की दिशा तय करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस लोकतांत्रिक उत्सव के साथ विकास की गति भी निरंतर आगे बढ़ेगी और दतिया नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर होगा। दतिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा, फोन करें, लोकगीत सुने, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: जय शेखर भैया, अपन और लेके आ गए हैं अपने श्रोता भैया बहनों को चहेतो कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। तो स्वीकार करो शशि और
1: जय शेखर की राम राम, राम। और ले थे शशि बिन्ना जो पहलो फोन। हेलो।
2: हेलो सर।
1: नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको।
2: फोन करें लोकगीत सुने।
1: बिल्कुल भैया, अपना नाम बता दो।
2: हम अनिल जैन देवरी से।
1: अच्छा अनिल भैया, क्या कर रहे हो देवरी में?
2: साहब तबियत ठीक नहीं है तो पड़े हैं घर में, एक पा दुख रहा है सर। अब इंदौर से दवाई करा के आए हैं, दुकान लगो सर।
1: अच्छा अच्छा, पाँव काय पिरा रहा है?
2: अरे सर एक नस तड़क रही है, बहुत जम गया। यार विंडो में रही, एक महीना ठीक होगा और फिर प्राण लगो सर।
1: तो भैया ऐसे में जब घर में पड़े हो तो आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगा थे आप?
2: पूरे हम तो सुनते ही था, सब कुछ सुना था आपकी।
1: चलो बहुत ही अच्छी बात है, तो अटका पूछ लें आपसे।
2: बोलो सर, बने रुका बताइए सर।
1: हाँ हो
2: जी,
1: बोले ना हेरे सन्ना रे बे।
2: अच्छा
1: हाँ
2: जी, दरवाजी है सर?
1: नहीं भैया, बताओ लोकगीत कौन सा सुनवा दे बे?
2: सर लोकगीत सुनवाइए हमें रामचरण यादव को।
1: सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे, रामचरण यादव को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो।
1: हेलो। हाँ भैया, कौन से गांव से बोल रहे हैं?
0: नमस्ते दीदी।
1: हाँ नमस्ते।
0: निकट से बसंत कुर्मी।
1: हाँ बसंत भैया, कौन से गांव से बताए?
0: दीदी कनेरा से। अभी तो है तो अर्जुनी में मामा के यहाँ शादी में थे अभी। तो हमें आज आकाशवाणी किया था कि हमने की बहुत दिन हो गए चित्रकूट से, अभी आए हैं गांव।
1: अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं ना आप चित्रकूट में?
0: जी दीदी।
1: चलो बढ़िया है भैया, कैसी का चल रही है आपकी पढ़ाई?
0: बस दीदी इस बार सेकंड ईयर कर रहे हैं, बीपीए तबला सीख रहे हैं दीदी वहीं पे। तो बस उसी के कोर्स की तैयारी है दीदी। बस क्या कहते हैं, अगस्त में हम लोगों को बहुना है वहीं पे, जबकि फीस भरी जाती है तो बस अगस्त से खुलेगी अब हम लोगों की स्कूल।
1: अच्छा अच्छा, चल अच्छी बात है भैया। और बताओ।
0: बस दीदी आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं, फोन करेगी सुने फोन करे लोग सुनो, जब भी टाइम मिलता है। तो हमारे दोस्त भी वहीं के हैं, मतलब यूपी के हैं मैम, तो वहाँ पे तो ज्यादा तो मैम सभी हम लोग साथ में न्यूज वन या एप के माध्यम से सुनते हैं दीदी।
1: सुन लेते हो सभी प्रोग्राम?
0: जी दीदी।
1: चलो
0: जी दीदी, खासकर हम फोन करे लोग सुने फोन करेगी सुने बाल सभा, और एक वो आता था वो मैम गागर में सागर। जी मैम ये सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं दीदी।
1: चलो अच्छी बात है भैया जी, तो कि देखो आप पढ़ाई करत करते और रेडियो से आपको इतने स्नेह है कि आप सारे कार्यक्रम सुनाई लेते हो। और बसंत भैया अब हमें आप बता दो कि आपको कौन से लोकगीत सुनने हैं?
0: अब तो दीदी कोई अच्छो वर्षा के हिसाब से कोई गीत सुनवा दियो आप। दीदी वो सुना दियो जयंत विश्वकर्मा को शेरो। हाँ वो है शेरो तो शेरो रे। और दीदी जो न मिले तो फिर चंद्रभूषण पाठक को कोई भी सुनवा दियो।
1: और भैया अब हम आपसे अटका पूछ रहे हैं आज को।
0: जी दीदी।
1: हाँ तो अटका कह रहा हूँ है, बोले न हेरे सन्नानो रेवे।
0: बोले न हेरे सन्नानो रेवे।
1: हाँ
0: दीदी का संकेत?
1: भैया संकेत आपके खेत वगैरह तो है?
0: जी दीदी।
1: तो बस खेत से संबंधित है।
0: बोले न हेरे सन्नानो रेवे। दीदी वो तो नहीं मैं रही?
1: नहीं नहीं भैया, वे तो हेरत भी है बोलत भी है।
0: बखा तो नहीं दीदी चलती है खेतों में?
1: नहीं नहीं।
0: तो फिर दीदी हम पे नहीं बंदाओ।
1: चलो कोई बात नहीं भैया, और आपने जयंत विश्वकर्मा की फरमाइश करी है, अब हम आपको सुनवा रहे हैं जयंत विश्वकर्मा को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको।
1: ग्राम लखरौनी से रविशंकर सुमन बात कर रहे सर।
0: लखरौनी भैया कहाँ पे पड़ा था अपनो?
1: सर दमोह जिला तहसील पथरिया।
0: तो भैया लखनौनी में क्या चल रहा है अपनो?
1: सर मैं किराने की शॉप है मेरी।
0: अच्छा अच्छा, तो भैया किराने को सामान आप कहाँ से ले आउ थो?
1: सर पथरिया से भी लाते हैं।
0: हाँ।
1: और कभी कभार दमोह भी चले जाते हैं सर।
0: अच्छा अच्छा, तो भैया आपके किराने की दुकान की खासियत क्या है, यानी गांव वाले का के आपकी दुकान पे आए, ये किराने आप क्या कर रहे थे?
1: सर स्पेशली तो वैसा मसाले वगैरह है सब अपने।
0: हाँ हाँ।
1: नॉर्मली जैसे अपन पेशवा के माने प्योर मिर्ची है, धना है, तीन चीजों को अपन मतलब सेलिंग करते हैं सर।
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है भैया। अब हमें बता दो आप
1: कि
0: अटका पूछे पहल के लोकगीत पूछ ले।
1: सर जो आप बोले सर।
0: तो हम अटका पूछे ले रहे हैं। अटका कह रहा है कि बोले ना हेरे सन्ना नो रे बे।
1: बोले ना हेरे।
0: हाँ।
1: सन्ना नो रे बे।
0: हाँ।
1: सर कुछ संकेत?
0: संकेत भैया खेतों की चीज है।
1: खेतों की चीज।
0: हाँ।
1: बोले ना हेरे
0: सन्ना नो रे
1: बे। सर नहीं बता पा रहे सर।
0: नहीं बता पा रहे
1: जी जी।
0: चलो कोई बात नहीं भैया, तो बता दो फरमाइश का ले आए हो आप?
1: फरमाइश सर मुझे सुनना है सर पुरुषोत्तम।
0: बहुत ही अच्छी बात है भैया, और सुन लो अपनी फरमाइश पे जो लोकगीत।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय।
3: हेलो।
4: हेलो।
3: हाँ भैया।
4: दीदी नमस्ते।
3: नमस्ते भैया, कौन से गांव से बोल रहे हैं आप?
4: हम बोल रहे सतराजू डेरन से, जिला जालौन उत्तर प्रदेश से।
3: अच्छा भैया, और आपको नाम कहाँ है?
4: विपिन कुमार।
3: हाँ भैया बताओ अपने बारे में, क्या चल रहा है आजकल काम काज आपको?
4: काम काज सर ये उठाई करते हैं, यही कारीगरी।
3: अच्छा अच्छा, और बताओ भैया।
4: बारिश भाई नहीं, खेती वेती है जो बखराई हो गई, जुताई सबरी।
3: हाँ हाँ,
4: पानी अभी गिरा नहीं है।
3: अच्छा, कौन सी फसल लेने हैं?
4: फसल अब बारिश होगी, बाजरा बवेगी, अरहर बवेगी।
3: बाजरा और
4: अरहर।
3: अच्छा चलो, अच्छी बात है भैया। जैसे जो आप खेती बाड़ी कर रहे थे, तो आप अपने आधार पर कर रहे थे कि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कर रहे थे?
4: नहीं, सलाह से करते हैंगे, यही सुनते रहते। कभी पहले रेट भी रखते थे तो वो सुनते थे, ग्राम सभा आता है तो यही बताते रहते हैं, तो यही सुनते थे।
3: हाँ भी आओ तो भैया किसान वाणी का।
4: हाँ, अब आता है लेकिन रेट भी नहीं है हमारे पास।
3: अरे फिर
4: मोबाइल पे सुनते हैं जब कार्यक्रम आओ।
3: हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि आप मोबाइल में सुन सका तो ऐसी कोई बात नहीं है, रेडियो नहीं है तो, है ना। चलो ठीक है भैया, अब हम आपसे आज को अटका पूछ रहे हैं।
4: हाँ पूछो।
3: हाँ अटका कह रहा है, बोले ना हेरे सन्नानो रेवे।
4: सांप?
3: नहीं नहीं, सांप नहीं है।
4: बादल?
3: नहीं बादल भी नहीं है भैया। बोले ना हेरे सन्नानो रेवे। नहीं, खेती से संबंधित है भैया।
4: अच्छा खेती से संबंध है। पेड़ वो पेड़े?
3: नहीं भैया, पेड़ भी नहीं है।
4: नहीं समझ में, बाजरा आजरा तो नहीं है?
3: नहीं नहीं। अब आप हमें लोकगीत बता दे, कौन सा सुनने हैं?
4: सियावाई जाटा।
3: चलो ठीक है भैया, और अब आप सुने सियावाई जाटा को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: भैया, फोन करे लोक गीत सुनने में स्वागत है आपको। तो
1: ग्राम कनेरा निखर से प्यारे लाल प्रजापति।
0: भैया नाम प्यारे लाल है आपको। तो
1: जी सर।
0: भैया क्या कर रहे हो आप उधर?
1: सर बैठे हुए थे, कुछ नहीं कराते हैं जी। सुनाते रहे थे अपने,
0: हाँ,
1: मोबाइल पे ही सुना थे अपन, तो लीड लगा ली थे, चला थे अच्छो सुनाते रहे थे।
0: अच्छा, तो भैया कौन सा कार्यक्रम है जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है
1: आकाशवाणी को? लगा किसान वाणी।
0: अच्छा, तो हमें कारण भी बता दो भैया कि मैं सब का अच्छा लगा था आपके लाने।
1: सर किसान वाणी में बताते हैं मुझकी अच्छी बात है, जैसे बीज उपचार करवे की बातें बताते हैं।
0: हाँ,
1: और पेड़ पौधा जैसे कछु रोग लग रहा हो तो उनके लाने दवाई बताते हैं।
0: हाँ,
1: और देसी खाद की बताते हैं, देसी खाद डालो जो खाद न डालो ज्यादा।
0: हाँ,
1: ये बातें अच्छी लगाते हैं।
0: सही कह रहे भैया, जो बहु उपयोगी कार्यक्रम है, मनोरंजन के साथ साथ सूचना और ज्ञान सब मिला था भैया ये कार्यक्रम में।
1: जी सर।
0: तो भैया सब काम धाम छोड़ छाड़ के फ्री हो के अपन किसान वाणी सुनने बैठ जाते हो आप?
1: जी।
0: चलो भैया बहुत ही अच्छी बात है। खेतों के हाल चाल बताओ कछु भैया।
1: सर अब धान की बोनी हो रही है और मका की हो रही, सोयाबीन की नहीं भैया बे। अब पानी गिर गया है आज।
0: हाँ,
1: आप होंगे कल परसों से।
0: चलो भैया बहुत ही अच्छी बात है भैया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं खेतों से जुड़ो भाव एक अटका।
1: जी सर।
0: बोले ना हेरे सन्नानो रहे।
1: जूता?
0: नहीं भैया।
1: जूता चप्पल भी बोलत भी नहीं सर?
0: नहीं बे, तो चट्टे चट्टे बोलत हैं चप्पले तो, और जूता भी चर चू बोलत है।
1: वो तो नहीं, मटका पानी भर के ले जाता पान।
0: नहीं मटका वो मैं रखो तो जात है, मैं पानी भर भी नहीं रखो जात, कई बार रख देते हैं।
1: वो चका रहे थे नीचे?
0: नीचे चका नहीं रहे थे, ऊपर मटका रहे थे।
1: तो नहीं समझ में नहीं आ रही।
0: कोई बात नहीं भैया, बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे। मैं
1: मगन लाल प्रजापति को लोकगीत सुनवा दीजिए।
0: ठीक है भैया, सुन लो अपनी फरमाइश पे मगन लाल प्रजापति को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो भैया, कौन से गांव से बोल रहे हैं?
0: नमस्कार मैडम,
1: नमस्ते भैया।
0: हम जमुनिया से बोल रहे हैं। मैडम
1: हाँ जमुनिया से बोल रहे हैं भैया, अपना नाम बताओ।
0: देवेंद्र कुमार अहिरवार, जिला विदिशा। मैडम
1: अच्छा, देवेंद्र भैया बोल रहे हैं जमुनिया से। तो देवेंद्र
0: जी
1: भैया को हम खूब खूब स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम, फोन कर रहे हैं लोकगीत सुनने में।
0: मैडम,
1: हाँ और बताओ भैया अपने बारे में, क्या काम कर रहे हैं आजकल?
0: मैडम खेती किसानी काम करती हैं।
1: तो क्या चल रहा हो आजकल खेतों में?
0: खेतों में का है मैडम जी, बखन्नी बोनी हो चुकी है। हाँ, पानी के में पानी थोड़ा सुबेरे गिरा था।
1: हाँ हाँ
0: जी मैडम।
1: तो काय की बोनी करी?
0: थोड़ा भी नो औरते भाई है मैडम।
1: अच्छा,
0: बो देते हैं थोड़ा सा। और
1: अच्छा, तो मक्का बो चुके हो?
0: हाँ मक्का बो देते हैं, और काई कद्दू है, लौकी है, ये भी लगा लेते हैं।
1: तो जैसे मक्का आपने बो तो कितने बड़े बड़े हो गए पेड़, आ गए कभुट्टा में?
0: अभी नहीं आए, बुझारी है, हो रही है मैडम।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: चलो ठीक है भैया। कहा कि बहुत से किसान भैया तो जल्दी से बो देते हैं, जैसे ही बरसात आउ थे

0: सो लो जगह जगह ठेलों पे है, दुकानों पे है, घरों में है, मक्का के भुट्टा भोजन लगाते हैं और बड़े चाव से खबर लगाते हैं भी।
1: जी मैडम।
0: चलो ठीक है भैया, अब हम आपसे आज को अटका पूछे।
1: जी पूछो मैडम।
0: हाँ अटका कह रहा है, बोले न हेरे सन्नानो रेवे।
1: बोले न हेरे
0: सन्नानो रेवे,
1: थोड़ा संकेत मिलेगा मैं।
0: हाँ भैया खेती बाड़ी से संबंधित है।
1: अच्छा हाँ। बिच्छू तो नहीं है?
0: बिच्छू नहीं है,
1: नहीं आ रहा।
0: चलो कोई बात नहीं भैया, अब हमें लोकगीत बता दो आप, आपको कौन सा सुनने हैं?
1: लोकगीत मैडम शकुंतला राजपूत को कौन अच्छा विवाह गाड़ी सुनवाने।
0: ठीक है भैया, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला राजपूत को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: भैया का उद्देश्य बना लो है आपने?
1: सर उद्देश्य हमें कुछ नहीं बना सर, अभी हमसे ब्रेजिटी की पढ़ाई कर रहा सर, ब्रेज सीख गया।
0: अच्छा अच्छा भैया, तो कहाँ जाते हो भैया स्कूल में?
1: अभी सर यहीं जाते हैं।
0: कहाँ पे?
1: हमारी 10वीं क्लास में।
0: तो ब्रेल लिपि में पढ़ाई होते होते?
1: ब्रेल लिपि में पढ़ाई होते, हम ब्लाइंड लोगों के टीचर बनना चाहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा काम है भैया, बहुत ही अच्छी बात है। आपने जो मुसीबत उठाई है, आप सोच रहे हो कि आप उन मुसीबतों से दूसरों को बचाओ, बहुत ही अच्छी बात है। तो भैया स्कूल कहाँ पे है आपकी?
1: सर छटवा मिल पे।
0: अच्छा भैया, अच्छी बात आपने बताई कि आपके पास ही है स्कूल। तो
1: जी सर, जन्म जात है।
0: और आप खूब खुश रहो और कोई भी दिमाग में बात ना ले आओ, सब अच्छी ले आओ कि आपको एक दिन टीचर जरूर बनने हैं। और भैया आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे टीचर बनो।
1: जी सर।
0: और हम पूछ रहे हैं आपसे अटका।
1: जी सर।
0: अटका कह रहे हैं कि बोले ना हेरे सन्ना नो रे।
1: सर चप्पल तो
0: नहीं भैया?
1: सर जूता?
0: जूता भी नहीं भैया।
1: संगीत तो नहीं?
0: संगीत भी नहीं भैया, संगीत तो खूब बोला थे।
1: संकेत दियो सर।
0: संकेत भैया जो खेतों में रेत है जा चीज,
1: ये तो रेत सर।
0: हाँ हमेशा
1: सर, पुतला तो नहीं सर?
0: बिल्कुल सही कह रहे भैया, वो का कहते हो आप पुतला को?
1: बिजू का।
0: तो बिजू का आपने छू के देखो है का? वो कैसे पता हो चलोगे खेतों में बिजू का रेत है?
1: सर पहले एक बार छू के देखो तो।
0: अच्छा अच्छा
1: जी सर।
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, बता दो लोकगीत कौन सा सुनवाएं?
1: सर उर्मिला पांडे को सुनवा दीजिए।
0: ठीक है, सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे उर्मिला पांडे को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: और जयशेखर भैया, ये लोकगीत के संगे अपनो कार्यक्रम चलो समाप्ति की तरफ।
1: मनु बिन्ना, कार्यक्रम समाप्ति की तरफ तो चलो है। आज को अटका भैया, ऐसो रहो के एक ही श्रोता बता पाए वो भी अखीर में, और अपन ने बहुत ज्यादा उनको दो संकेत।
0: बिल्कुल भैया, और भैया अटका है तो आज को बोले ना हेरे सन्नानु रेबे,
1: तो हमें समझा दो जो कहा है।
0: जयशेखर भैया, बिल्कुल सरल अटका है और अपन ने संकेत भी दो कि खेती बाड़ी से संबंधित है। जे ही है जो अपने खेत खलियान के अपने किसान भैया रहे थे, सुबह एक बिजू का बनाऊ थे खेत। अच्छा। में तो मटका ओंधा देते हैं और पुरानी शर्ट टी शर्ट वगैरह पहना देते हैं, कभी तो साड़ी भी उड़ा देते हैं। सो डंडिये लगा देते हैं, सुबह हाथ पसारे ठाड़े रहते हैं। सो ना तो देखो उन्हें बोलने हैं और ना हेरने हैं, मगर जो छोटे मोटे जानवर हैं,
1: पक्षी
0: हैं, जे सब डरत रहते हैं कि को ठाड़ो है।
1: सही,
0: तो इको उत्तर है भैया बिजू का।
1: बहुत ही अच्छी बात है।
0: जयशेखर भैया, जैसे कि अपन हमेशा अपने श्रोता भैयाहरों से कहते रहते हैं कि आप और पारंपरिक अटका हमारे पास लिख के भेजो, तो कैसे लिख के भेजे बता दे मैं व्हाट्सएप नंबर।
1: बिल्कुल शशि बिन्ना, मोबाइल नंबर है जो उन पे आपको व्हाट्सएप पे भेजने हैं 9770432297। एक हो हिंदी में भी बोले दे रहे हैं 9770432297। अच्छा भैया, ये मैं अपन को ऊपर लिख देने हैं अटका, और आप चिट्ठिया लिख के भेजो तो मैं भी अपन को अटका लिखने हैं, तो चिट्ठिया के लाने हम पतो बताए दे रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: सबसे ऊपर लिख दो अटका, फिर लिख दो द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सागर मध्य प्रदेश।
0: तो जयशेखर भैया, आपने देखो अपने श्रोता भैया बहनों को व्हाट्सएप नंबर बता दो है मोबाइल को, और चिट्ठिया पतिया लिखवे के लाने पता भी बता दो है। तो हमें आशा है कि अपने जो भी श्रोता भैया बहने हैं अपने पास भी बढ़िया बढ़िया से अटका लिख के भेज दे। और जयशेखर भैया, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिलो देवेश पांडे से, और प्रस्तुति हती जयशेखर की। अब दो आज्ञा शशि और
1: जयशेखर को
0: राम राम, राम।

0: फोन करें, लोकगीत सुने। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में श्रोताओं से फोन पर बातचीत कर रहे थे जय शेखर और शशि प्रभा गुप्ता। प्रस्तुति जय शेखर की थी और संयोजन दीपक निषाद का था। इसका ये पुनः प्रसारण था। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अरे काय भैया, ये सो मोह लटकाए काय को दिए थे?
2: अब का बताएं भज्जा तुमकी, कोनो ये कऊ परेशानी होए तो बतावे। ये तो रामधई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
1: अरे भैया ये सो का होगा, कुछ तो बताओ।
2: अब तुम्हें का बताएं भज्जा, कबहू जो ढोर बीमार, कबहू वो ढोर बीमार, कहूं ये खोजा परेशानी, कहूं वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
1: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगत है, ओ में आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
2: अच्छा अच्छा हाँ, हाँ,
1: हाँ। मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20 हाँ, और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845। बड़े समझदार हो, इसमें कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को, वो सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया। सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर है 9 7 7 0 4 3 2 2 9 7।
2: एक बीर फिर से बता दे भज्जा।
1: भैया फिर से लिख लो, इसमें कछु परेशानी नहीं, 9 7 7 0 4 3 2 2 9 7।
2: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लगा तो फिर बात साहब।
1: अरे
2: अच्छा जा बताओ भज्जा, ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
1: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें, लगाओ हेलो किसान वाणी में फोन।
3: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
1: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
1: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लवण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश, छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबुएलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
1: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
2: जी जी जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
2: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
2: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी

0: अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था।

कर्मचारियों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दी है। हाँ
2: अरे धृताची।
3: हाँ भैया।
2: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
3: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
2: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
2: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
2: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियाँ टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ाइयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
2: जी पिताजी।
4: उसमें रख कर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
2: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
2: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार

0: कर लिए।
1: अरे प्रभाहन
2: जी पिताजी,
1: तुम तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
2: वो पिताजी
1: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
2: जी वो
1: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
2: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
3: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
4: हाँ हाँ पिताजी।
2: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
3: हाँ।
2: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
1: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
2: जी
1: कल हस्तिनापुर जाना है।
3: पर क्यों पिताजी?
1: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
3: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
4: जी पिताजी,
3: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
1: बहुत अच्छा।
3: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
2: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
3: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
1: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
3: जी पिताजी।
1: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
3: अच्छा पिताजी।
1: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
3: अच्छा
2: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
5: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
1: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
5: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
2: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
4: और क्या,
2: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
5: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
2: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
1: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
3: जी पिताजी।
1: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
2: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
3: और पिताजी एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
2: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेश से भी रथ आ रहे हैं।
3: हाँ।
2: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
1: हाँ ये तो है।
4: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: अरे सुनो सुनो कुछ कह रहे,
1: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
2: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
1: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
2: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
3: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
4: अरे वो देखो वो देखो,
1: क्या
4: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो,
1: अरे क्या बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
4: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
3: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते
3: हैं। हाँ, चलो चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
2: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं। चलो
2: चलो।
4: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
5: ये पकड़ा।
2: अरे ये कोलाहल कैसा है?
6: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
2: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
2: अरे रुको तो सही, अरे देखो देखो
3: क्या
2: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: हाँ, अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
2: हाँ,
3: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
2: हाँ,
3: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
7: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।
5: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
6: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
5: News on AIR?
6: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
5: अरे वाह माँ, कमाल है।
3: News on AIR।
7: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
4: श्रोताओ, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 11:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: तस्वीर तो देखो।
1: तुम मेरी जुल्फे गिराहगीर को क्यों देखते हो, और मेरे पाँव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
0: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई, नजर जब उठी मेहरबान हो गई, नजर जब मिली तो जहां हो गई, जो पलटी तो दिल की जबा हो गई, जो

0: झुकाते नजर से देखा,
1: क्या बात है,
0: दिल एक मंदिर है तुम उसकी मूरत हो, किसी ने सच कहा तुम कितने खूब।

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाहु झूठा आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा तुम्हारा काम झूठा, तुम्हारा मैं कदा झूठा तुम्हारा जान भी झूठा, तुम्हारी रात झूठी चांद झूठा आसमां झूठा, हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें याद करने की जिद छोड़ दूँ।

0: नजर झुकाओ, हसीनों का एहतराम करो, है मेरा नाम जवानी मुझे सलाम करो, जो हुस्न चाहे तो लग जाए आग पानी में। अजी किसी हसीन को देखा भी है जवानी में, शमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, बाखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। सरे बाजार मेरे हुस्न का चर्चा ना करो, प्यार सच्चा है तो फिर तुम मुझे रुसवा ना करो, चांद ऊंचा।
1: डाकू हसीना फिल्म की एक कव्वाली आप सुन रहे थे दिलावर बाबू और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ आज का रंग तिरंगे प्रोग्राम खत्म होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे

0: आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मौसम फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपकी कसम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के

अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम यादों की महफिल। खिलौना फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज।

खिलौना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आज है जाने माने अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन। अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में ये गाना फिल्म पति पत्नी और वो।
1: हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए,

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विधाता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाटकर, अनवर और साथियों की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म थी जिंदगी। गृह प्रवेश फिल्म का गाना सुलक्षणा पंडित की आवाज, गुलजार के बोल कनू रॉय का संगीत है।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

गृह प्रवेश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे भूपिंदर और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार कनु रॉय। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो भाई, जो लोग, जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं उपस्थित, तो उन्हें तो आज की इबारत की जानकारी हो ही गई होगी, लेकिन जो श्रोता विविध भारती के

0: फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत लिखते हैं और उसमें जो शब्द होते हैं उन शब्दों से गीत हम श्रोताओं से कहते हैं ढूंढने के लिए, और कुछ पहेलियां होती हैं, गाने होते हैं, कुछ गाने श्रोताओं की पसंद की भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो हम आज की इबारत ज़रा आपको पढ़कर सुना देते हैं। आंखें मन की खूबसूरत इबारत हैं, इनमें नींद और ख्वाबों का अनंत आसमान भी, यहीं सपने जन्म लेते हैं और उम्मीदों के रंग आकार पाते हैं। कभी ये खामोश रहकर भी दिल की हर बात कह देती हैं आंखें, तो कभी एक नज़र ही पूरी कहानी लिख देती है। आंखों में इश्क का पहला एहसास प्यार की रोशनी ठहरती है और कभी कोई चुपके से दिल भी चुरा लेता है। आंखों की चमक में हंसी खिलती है, खुशी झलकती है और बिछड़ने का दर्द आंसुओं में ढल जाता है। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनमें यादों की महकती खुशबू होती है। आंखें सचमुच मन का आईना है, इनमें नींद भी है, ख्वाब भी, सपने भी, बातें भी, हंसी भी, शब्द भी, खामोशियां भी, और सबसे बढ़कर इनमें वो जादू है जो बिना कुछ कहे किसी का दिल चुरा लेने की ताकत रखता है। किसी की आंखें देख चौदहवीं का चांद याद आता है, और अभी ये भी धुन सुनी थी आपने इसी गाने की। तो बताइए आपकी आंखों में पहला ख्वाब कौन सा चमका था? रात भर किसी के लिए जाकर उसकी फिक्र कब की, किस सन में, किस साल, कौन सा ऐसा लम्हा था किसी के लिए आप जागते रहे? अपने बच्चे के लिए सभी माँ जागती है, सभी पिता जागते हैं। कभी जब बच्चा रोता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या यूं ही बच्चे को थपकी देते हुए, ऐसे बहुत सारे लम्हात होते हैं जब आप जागते हैं किसी के लिए। कभी आपके नयन किसी से डर जाते हैं, क्या आप किसी की आँख की रोशनी बनना चाहते हैं? तो हमें ज़रा बताइए, फिलहाल बताइए कि वो कौन से शब्द हैं जिनसे आप गाने चुन सकते हैं। तो गानों की फहरिस्त आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके गाने और हमारे गाने एक हो जाएं, तो हम वही गाना सुनवाएंगे। और दोस्तों, आंखों में नींद होती है, ख्वाब होते हैं, कई बार जब हम जागरण करते हैं तो कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ लिख डालते हैं, ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? आंखों से दुनिया देखी जाती है, हम इंसान को परखने का काम भी आंखों से ही करते हैं, और आंखों से पढ़ाई लिखाई करके अपनी एक विचारधारा गढ़ते हैं। आपने क्या किया है बताइए, आप अपने अनुभव साझा करते रहिए। और हाँ, अगर जब इस संसार से विदा के बाद अपनी आँखें अगर किसी को दान कर दें तो किसी की आँख की रोशनी बन सकती है, तो आपने ऐसा कुछ सोचा है तो वो भी बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब शुरू करते हैं सिलसिला कार्यक्रम का। सबसे पहले प्यासा फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। बताइए कौन है हीरो हीरोइन?
1: इस दिल को बसा दे तो हम

प्यासा फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। हमारा सवाल ये था कि कौन है हीरो हीरोइन। गुरुदत्त और माला सिन्हा, बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे दिया। और आज गुरुदत्त का जन्मदिन है, संजीव कुमार का भी जन्मदिन है। संजीव कुमार के बहुत सारे गाने हमने यादों के महफिल कार्यक्रम में सुना है, लेकिन गुरुदत्त के नाम ये गाना था। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज उन्हें हमें याद करना चाहिए, लेकिन आज जो गाने हमने चुने हैं वो आँखों से जुड़े, लेकिन आज की इबारत में जो शब्द हैं उन शब्दों से आपको गाने चुनने हैं, तो ज़रा गाने चुनकर हमें बताते चलिएगा। फिलहाल हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी की आंखों को पढ़ना भी एक कला है, क्योंकि शब्द भले ही धोखा दे जाएं, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी से भरी आंखों में एक चमक सी होती है, उदास आंखों में नमी कुछ भारी पर होता है, मानो बिना बहे आंसुओं का बोझ उठा रही हो। कभी ये इशारों में बात करती हैं, लेकिन रहस्यमयी होती हैं वे आंखें जो शून्य में खोई रहती हैं। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कब कैसे किसी की आंखों की परिभाषा आपने समझ ली, और कब कैसे किसी की आंखों के नूर बन गए। और ये कहा जाता है ना कि अरे वो तो मेरी आंखों का तारा है, ख़ास तौर से अपनी संतान के लिए। तो आप बताइए, आपकी आंखों का तारा कौन है, आपका बेटा या बेटी या दोनों? और आप किसकी आंखों के तारा हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र? बताते चलिए। फिलहाल सी आई डी फिल्म

जरा हीरो और हीरोइन का नाम बता दीजिएगा। गीतकार का नाम पता है तो वो भी बता सकते हैं आप।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। जानिसार अख्तर के बोलते हमने पूछा भी था आपसे सवाल, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने सही लिखा है। संगीतकार थे ओपी नैयर, फिल्म सीआईडी और देव आनंद शकीला। हमने ये भी आपसे सवाल पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि घर से किसी प्रियजन का बिछड़ना या अचानक गुमशुदा हो जाना रात भर जागने को विवश कर देता है। हर एक पल उसकी चिंता बनी रहती है, रातों की नींद और दिन का चैन छिन जाता है, मन हर पल बेचैन रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वाकई बहुत ही खूबसूरत आज की इबारत है। आंखें दिल का आईना होती है, जो बात हम जबान से नहीं कह पाते वो बातें आंखें पलक झपकते ही कह देती हैं। हिंदी फिल्म जगत में कुछ ऐसे बेमिसाल अदाकार हो चुके हैं जिनकी आंखें बोलती हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हो, गहरा दर्द हो या फिर बिना कुछ कहे जताया गया प्यार हो। दिलीप साहब, गुरुदत्त जी, अमित जी, मधुबाला, मीना कुमारी ऐसे कलाकार थे जो उपरोक्त कही गई भावनाएं बिना कुछ बोले ही अपने आंखों से बयां कर देते हैं। वैसे आम जिंदगी में भी कुछ लोगों की आंखें बोलती हैं। कुछ लोग जो झूठ बोलने के आदि होते हैं उनकी आंखें उनकी बातें छुपा लेती हैं। तो अपनी आंखों को पारदर्शी बनाए रखिए। फिलहाल सुनिए अनारकली फिल्म का ये गाना। अब जरा बताइए कि इसे लिखा किसने है, यानी गीतकार का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम।

हेमंत कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और फिल्म थी अनारकली। और हमने आपसे पूछा था कि आप बेटी और बेटों में से कौन आपकी आंखों का तारा है, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि बेटों से ज़्यादा बेटी आंखों का तारा होती हैं। क्या बात है भाई। और हमने आपसे ये भी अब पूछा है कि किसके लिए आप रात भर जागे, बताइए क्या आपके लिए कोई रात भर जागता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी संतान कहीं बाहर है, पढ़ाई के लिए गई है, नौकरी पेशे के लिए, तो आपकी आंखों में नींद नहीं है, चिंता में कुछ, जब ख़ास तौर से ऐसे मौसम बदलते हैं, बारिश तेज़ होती है, तो माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे इतनी बरसात हो रही, पता नहीं है हमारी संतान किस हाल में होगी। अब तो फ़ोन एक माध्यम है जब आप फ़ोन करके हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन कई बार रात को नींद उछड़ जाती है, आप चिंता में खो जाते हैं, कई बार बिन बात भी, बिना किसी कारण आप जागने लगते हैं। तो ऐसी जागरण वाली बातें आप बताइए, किन बातों पर आपकी नींद टूट जाती है और आप जागरण करते हैं, जागते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालात बदल बदल गई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखें हर आत्मा की खिड़की होती हैं, जो हर नज़रिए से एक कहानी बयां करती हैं, दुख में ये आंखें रिसती हैं और गुस्से में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन हमें ये झूठ भी बोल सकती हैं क्योंकि ये धोखेबाज भी होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे खूबसूरत देन है आँखें इंसान के लिए, वो आँखें जिससे हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। इन आँखों की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये अपनी खुशी दुख सबसे पहले व्यक्त करती हैं। इंसान शब्दों से तो बाद में बताता है, पर उससे पहले ये आंखें बयां कर देती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मी दुनिया में दो अभिनेताओं के नाम लेना चाहूंगा, दिलीप कुमार प्राण, अभिनय में ये हाथों या शरीर से जितना अभिनय नहीं करते थे उतना सिर्फ आंखों से अभिनय करते थे। कई बार निर्देशक और कैमरामैन सिर्फ इनके चेहरे का क्लोजअप लेते थे और पूरा सीन सिर्फ इनकी आंखें बयां कर देती थीं। चलिए अब फिर एक जागने वाला गाना है, तो फिर मेरा सवाल यही है कि बताइए आप किसके लिए कभी जागे, आपके लिए कौन जागरण किया रात भर। फिल्म बहुरानी, गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

बहुरानी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत। हमारे श्रोताओं ने ये सही जवाब हमें दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंख की दुनिया संवेदना की दुनिया है, सुंदर मधुर जीवंत संवेदना जो हमारे मन प्राण में बसती है, अक्सर वो आंखों के रास्ते बह निकलती है, सुख या दुख आंखें बरबस छलक जाती हैं, ये संवेदना ही लय बनकर हमारी आत्मा तक पहुंचती है और गीत बनकर मुखरित होती है। तभी तो शैलेंद्र जी लिखते हैं, जाने कैसे सपनों में खो गई आंखियां और गुलजार तो दो कदम आगे बढ़कर आंखों में महकती खुशबू बसा लेते हैं। रचनात्मक लोग जिंदगी में डूबकर आंखों से भावनाओं का सच बयां करते हैं। आंखें दिल का आईना है और हमारी सच्ची साथी भी, सुख या दुख कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे साथ ही हंसती हैं। और हमने आपसे पूछा था जब बहुरानी फिल्म का गाना सुनवाया कि आप किसके लिए जागे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी माँ का ब्रेन हैमरेज हुआ था और हॉस्पिटल गई थी, तो हम पूरी रात जागे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो शब्द हैं, आँखें सपने रोशनी चमक आईना जादू चांद नयन हो सकते हैं। भाई गाने भी तो सुझाते चलिए कौन से गाने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये आंखें हैं जो भरी सभा में भी बहुत सारी हरकतें कर जाती हैं, बोलती हैं, नाराज़ होती हैं, रीझती हैं, खिन्न होती हैं और शर्माती भी हैं, ख़ास तौर से जब आप इश्क में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो आंखों आंखों में बातें हो जाती हैं और दो लोगों के बीच जो बातें होती हैं तीसरे को पता भी नहीं चलती हैं। लेकिन हाँ, जब इश्क मोहब्बत में आ पड़ते हैं तो नींद भी गायब हो जाती है। तो बताइए कि क्या कभी आपकी नींद गायब हुई है किसी के लिए? सुनिए ये गाना और हमें बताइए कि इसमें कौन है हीरो हीरोइन। साथ में ये भी बताइए कि कब किसके लिए आपकी नींद टूटी और आपके लिए किसकी नींद टूटी, और नींद वाले कौन से गाने आपके जहन में इस समय कौंध रहे हैं।

बोस बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया सुनील दत्त शकीला और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और हमें ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हम जो सवाल पूछ रहे हैं त्वरित जवाब आप दे रहे हैं साथ साथ, ये नहीं कि पहले से टिप्पणी पोस्ट कर दी है, तो ये तब हमें और अच्छा लगता है कि जब आप लगातार शामिल रहते हैं इस कार्यक्रम में। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बातें यादों की बात चल रही है, जब मैं आर्मी की भर्ती दी थी तब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, उस दिन रात भर मुझे बेचैनी थी, सुबह 6 बजे रिजल्ट देखा तो उस दिन खूब रोया था और आंसू आंखों में होते हैं। तो हमने आपसे पूछा था कि कब आप जागे थे, कौन सा वो दिन था किसी के लिए या कोई लम्हा, तो इसके जवाब में हमारे श्रोता लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे लिए रात रात को मेरी माँ जागती थी जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी और जब बीमार होते थे तब भी। एक श्रोता ने लिखा है कि गिटार के साथ बढ़िया ग्रुप वायलिन बहुरानी फिल्म में सजन तुम सो जाओ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मम्मी हम सभी भाई बहनों के लिए जागती थी और अब हमें पता चला कि मम्मी पापा हम सभी के साथ कितना किया, जब मेरा बेटा हैदराबाद गया तब आंखों में आंसू आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो नई बहू आई तो बहुत देर तक जागते रहे, गर्मियों के दिन छोटी रातें, ऐसे में पत्नी हमारी बहन के साथ गप्पे मार रही थी, इसके बाद माँ के पैर दबाने लगी, किससे कहानी में रात 2 बज गए, गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन संस्कार ऐसे कि हमारे घरों में है कि पांव के पायल की आवाज भी न मालूम पड़े। खैर एक श्रोता ने लिखा है कि एक रात मेरी तबीयत खराब थी, उल्टियां हो रही थी, तब मेरी बेटी सारी रात मेरे पास बैठकर जागती रही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम बच्चों के लिए तो कई बार जगे रात भर और कई बार तो बच्चे पढ़ने जाते थे तो रात भर जागकर उनके ले जाने के लिए खाना बनाया ताकि वो ट्रेन और वहां जाकर घर का खाना खा सकें, और कभी किसी के इंतजार में भी जगे और इसलिए भी सुबह जल्दी ट्रेन है तो कहीं छूट न जाए, बेटी परेशान न हो जाए। जब कोई आने वाला होता था तो पूरी पूरी रात इंतज़ार किया जाता था कि सुबह 6 बजे या 4 बजे ट्रेन आएगी, नींद नहीं आती थी, ऐसा भी होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी 12 गीतों के लिखे इबारत में से चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत शामिल हो गया, क्या बात है। ऐसे बहुत सारे श्रोताओं के गाने शामिल हो रहे हैं और अब जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इसके लिए भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आंखों की महकती खुशबू गुलजार साहब महसूस करते हैं, तो सुनिए ये गाना और ज़रा बताइए कौन है इसमें हीरो हीरोइन। फिल्म घर, संगीतकार राहुल देवर्मन, गीतकार गुलजार, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

घर फिल्म का गाना था, हमने आपसे सवाल पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, सभी श्रोताओं ने जवाब दिया है सही, रेखा और विनोद मेहरा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये तुम्हारी झील सी गहरी आंखें बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाती हैं, खो जाते हैं हम इन नशीली आंखों में ऐसे जैसे कोई कश्ती समंदर में उतर जाती है। किन आंखों से आपको डर लगता है ये जरा बताइएगा, माँ पिता टीचर पत्नी पति या किसी दोस्त से, मतलब आंखें देखकर डर जाते हैं। माँ की आंखों में अगर क्रोध दिखाई दे जाए तो बस सब काम बड़ी जल्दी हो जाता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा। जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली ममता निछावर करने वाली माँ ही होती है, तब भी माँ की आंखों में अगर जरा भी नाराजगी दिख जाए तो बस सब कुछ मामला जैसे उलट जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से हमें कविवर बिहारी याद आ रहे हैं जिन्होंने नयन के बारे में लिखा है, कहत नटत रीझत खीझत मन ही मन लजियात भरे भौन में करत है नयनन ही सो बात, और ये आंखें दिल की जुबा है, और भी कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरुदत्त और हरफन मौला अदाकार अभिनेता संजीव कुमार दोनों का जन्मदिन है, उनको याद करके आज का सुरीला सफर कैसे पूरा करें। भाई उन्हें याद किया, गुरुदत्त को हमने इस कार्यक्रम में याद किया, संजीव कुमार जी को यादों की महफिल कार्यक्रम में। फिर भी इबारत की ओर आंखें नजरअंदाज नहीं कर सकती, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों के इशारे पर कई शायरों ने गीत लिखे हैं और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दरअसल आंख

ऐसी हैं कि आंखों पर अनगिनत गीत हैं, अनगिनत गाने हैं और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं अनगिनत गाने। लेकिन अब हम नयन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि नयन में डर कैसा होता है। आप अपने अनुभव बताइएगा कि किन नयनों से आपको डर लगता है।

कोरा फिल्म का ये गाना था, हेमंत कुमार की आवाज थी, कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था और गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आंखों की बात चली है तो मैंने बहुत सी पुराने फिल्में देखी है और हर फिल्म में अभिनेत्री अधिकतर आंखों से ही एक्टिंग किया करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हेमंत कुमार की मखमली आवाज़ थी, कैफी आजमी के गहरे बोल रहस्यमय संगीत का एक बेहतरीन मिश्रण है और ये सिर्फ फिल्मी गाना नहीं बल्कि संगीत और शायरी का एक ऐसा दस्तावेज है जो हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपका ये आंखों पर लिखा गया लेख सबकी आंखों को परखने का काम भी करेगा, इनमें किसी के सपने, किसी की खुशियां, किसी का अपनापन तो किसी की नाराज़गी और भी बहुत कुछ नज़र आने वाला है, पर क्या आप किसी के दर्द को पढ़ पाएंगी? वैसे तो आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं पर छुपाती भी बहुत कुछ हैं और कभी कभी खुशी में भी छलक जाती हैं आंखें, इन्हीं आंखों से आंसू और कभी आंसू बहाकर दिल को हल्का भी कर लेते हैं, इन आंखों में निकलने वाले आंसू। बात आंसू की

चली है, तो चलिए अब एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। जरा आप बूझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। किन मौकों पर आपकी आंखों में आंसू आए? हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, कभी खुशी का, कभी दुख का। संगीतकार का नाम भी जरा बूझिए।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था, हमने पूछा था फिल्म का नाम, सभी ने बताया श्रोताओं ने सही जवाब, और गीतकार का नाम पूछा था कैफी आजमी, वो भी सही बताया, संगीतकार मदन मोहन, आवाज़ लता मंगेशकर की, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक झलक दूर से मेरी आंखों ने देखी और मैंने ठान ली कि मेरी जीवन संगिनी तो यही होगी, 100% हमारी अरेंज मैरिज थी और रिश्ते होने पर सगाई में 18 महीने का अंतर था, मतलब आंखों से इनका रिश्ता तय हुआ। और एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में मुझे भूरी आंखों से डर लगता था, वो डरावने लगते थे लोग, माँ पापा ने समझाया तो डर गया। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ने बचपन में हम भाई बहनों को डांटा या मारा नहीं, हम लोग तो बस उनकी आंखों से डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अपनी मम्मी की आंखों से डर लगता था, जरा सा गुस्से में देखती थी और मैं एकदम रोने लगती थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी एक महिला मित्र है जिनकी आंखों से मैं डरता हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, एक अपने फिजिक्स के टीचर की आंखों से बहुत डरते थे हम, और इसके अलावा अपनी जेठानी की आंखों से भी। क्या बात है, टीचर की आंखों से तो बहुत लोग डरे होंगे, बताएं या ना बताएं, लेकिन कई बार जब होमवर्क नहीं पूरा होता तब टीचर की आंखों से बहुत डर लगता है। तो आप क्या कभी डरे टीचर की आंखों से, बता दीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब शब्द थक जाते हैं और भावनाएं इतनी विशाल हो जाती हैं कि वे भाषा के बंधनों में नहीं समा पाती, तब आंखें ही संवाद का माध्यम बनती हैं। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि वे आत्मा की खुला झरोखा हैं, जहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। एक तरफ जहाँ 14वें के चांद जैसी शीतलता मन को सुकून देती है, वहीं दूसरी तरफ विरह के आंसू दुख देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आंखों की खामोशी और उनकी गुफ्तगू के जादू को बेहद नज़ाकत से बयां करने वाला एक खूबसूरत दस्तावेज है। ये लेखन केवल आंखों की तारीफ नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर छिपे भावनाओं के समंदर को शब्दों का रूप देता है। लेखक ने खूबसूरती से आंखों के विरोधाभासों और उनकी गहराई को समेटा है। दोस्तों, आंखों में सपने भी होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, कई बार कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आप बताइए आपका कौन सा सपना हुआ पूरा और कौन सा रह गया अधूरा। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, गुलजार के बोल, खयाम का संगीत था और श्रोताओं ने जानकारी दी है शबाना आजमी, राजेश खन्ना पर्दे पर। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों के बोल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पसंद के बहुत सारे गाने आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंखों में न रुकने वाले आंसू आए मेरी आंखों में जब 31 जुलाई को रफ़ी साहब के इंतकाल की खबर सुनी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत है, बहुत बार सुनते हैं हम ये गीत, हमारी आंखों में आंसू बहुत बार आ जाते थे पहले, हम कभी किसी का दर्द नहीं देख पाते थे, पर अब धीरे धीरे आंसू छुपाना आ गया है। हम हंसते भी बहुत हैं और शायद आंसुओं से भी गहरा रिश्ता है। जब बेटी विदा हुई तब तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और फिर जब हमारे साथी ने हमारा साथ छोड़ा फिर पापा तो बहुत आंसू बहाए, पर आंसू बहाने पर भी जाने वाला लौट कर तो नहीं आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी का के बोल बहुत अच्छा लगा, मर्म स्पर्शी गाना है और ये गीत सिखाता है कि जब शब्द संगीत और आवाज़ का सही तालमेल हो तो एक कालजयी रचना का जन्म होता है। आज भी जब लोग अकेलेपन या पुराने दिनों को याद करते हैं तो ये गीत सुनते हैं। फिल्म हंसते जख्म का और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, संक्षेप में हमने इनकी टिप्पणी आप तक पहुँचाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मम्मी की आंखों से हम कभी नहीं डरे क्योंकि इकलौता बेटा था, वे हमेशा प्यार से पेश आती रहीं। हाँ, पिता की आंखों से हम डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत साहित्य शायरी में सबसे चर्चित जिस्मानी आंखों के विभिन्न रूपों का बखान किया गया है। अब प्रोग्राम का आखिरी गाने की झलक फिल्म

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया गीतकार संगीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि एक सपना था जो फौज में जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। एक था जिंदगी का हम सफर साथ साथ चले सारे जीवन भर, लेकिन वो सपना भी अधूरा रह गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज शुरू का सफर ममता दीदी के साथ सुपर फास्ट रहा, 120 की स्पीड पर चलकर उनकी प्रस्तुति बेस्ट रही। भाई अगर हम स्पीड को धीमा करेंगे तो आप सब श्रोताओं की ढेर सारी टिप्पणियां कैसे।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म भागम भाग का ये गीत। गीत समीर का है और संगीत है प्रीतम का।

सईद कादरी का लिखा अनु मलिक के संगीत से सजा हुआ गीत सुनिए आमिर जमाल की आवाज में। फिल्म का नाम है मर्डर।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप और डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की भी शुरुआत की गई है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील का दौरा किया। उन्होंने यहां किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 4 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं। एक लाइन बहाल कर दी गई है और अब ट्रेनें 2 इंजनों के साथ चलाई जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण दौरे पर प्रदेश में आए हुए हैं। कल देर रात में मंदसौर जिले के करोट स्थित रूपरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं और हाईवे के कारण खेतों में पानी भरने की समस्या पर ध्यान देने की अपील की। करीब 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे का करीब 244 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश

से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उन्होंने भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना की। करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा उन्होंने पैदल पूरी की। रास्ते में श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। परिक्रमा 2 घंटे 10 मिनट में पूरी हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री बांदा रवाना हो गए, जहां वे विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भी बारिश की संभावना है। इस साल अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का 4वां मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में इंग्लैंड फिलहाल 2-0 से आगे है। भारत को श्रृंखला में बने रहने के लिए मैच जीतना बेहद जरूरी है। तीसरे मैच में भारत को 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल जिले के मालखेड़ा और जावी गांव में जैविक खेती कर रहे किसानों के खेतों का निरीक्षण कर प्राकृतिक खेती की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जल जनित बीमारियों से बचाव के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के ग्राम थड़ौदा के प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। शिवपुरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कल स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण सुरक्षा का कवच विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया। झाबुआ कलेक्टर ने कल जिले के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों, मध्याह्न भोजन और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। भिंड में मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को किया जाएगा। राजगढ़ के सभी पेयजल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग

0: के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपने समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
2: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के दिन हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित

0: प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमें। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।
3: आपके हसीन रुख पे आज नया नूर

0: बहारें फिर भी आएंगे। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत था। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शकील बदायूनी का लिखा गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम। आइए अब सुनिए मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना। गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीतकार ओपी नैयर।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित

पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45

0: आर पार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
3: जरूर सुनिएगा

0: ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं अभिलाषा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं, धुन बनाई है राहुल देवबर्मन ने।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं

0: तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सहेली सुनने वाली हमारे सभी सखियों सहेलियों और सखा भाइयों को जो कार्यक्रम सखी सहेली सुन रहे उन्हें और सोनाली आपको दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
0: बिल्कुल भाई बहुत बहुत नमस्कार। और ये बदलते मौसम में अपना सब खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे हम ये उम्मीद करते हैं आशा करते हैं और घर का भी ध्यान रख रहे होंगे और इस बारिश में बहुत सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि सोशल मीडिया न्यूज समाचार पत्रों से मुंबई की बारिश के हालचाल दिख रहे हैं और इसके बाद भी सही समय पर आप सभी का प्रोग्राम पेश करना अपने कार्य के प्रति निष्ठा बहुत बड़ी बात है। भगवान से दुआ है आप सब अपने सुरक्षित रहे और अपने कार्य करते रहे। ऐसे कोई जब हमारी परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भी तो अपने वादे पे हमें उतरना होता है सही खरा बनना पड़ता है।
1: और हमारी श्रोता भाई बहन भी इतनी बड़ी ही शिद्दत के साथ में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखते हैं तो इतना आनंद होता है ना, ऐसा लगता है कि सभी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं।
0: बिल्कुल

0: और हमसे बतिया रहे हैं इन मैसेजेस के माध्यम से।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इस हमारा तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खूब सारी जानकारियां लेकर आए, मनोरंजक गीत लाएं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हों,
0: है ना। और जैसे बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रही है, और जहां नहीं हो रही है तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से वहां भी बारिश हो जाए, बस बारिश संतुलन में हो
1: जी।
0: उसके लिए जो है सड़क यातायात और बारिश, यानी ये देखिए ना, इन दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है सड़क यातायात की, कि कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिश के मौसम में, तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है, इस विषय पर उपयोगी टिप्स ये हमारे श्रोता भाई बहन इनने बहुत सारे लिखकर भेजे हैं, हम भी बताएंगे।
1: बिल्कुल हाँ। और फिर क्या होता है जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती बहुत बारिश की वजह से, पिछले कुछ दिनों में हमने मुंबई में देखा, आपके शहर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती है और फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से भी आती है कि अपील होती है कि भाई जो जहाँ है वहीं रहें, और फिर ऐसे में बच्चों की जिद जो घर में रहते हैं तो उनकी शुरू हो जाते हैं, आज हम स्कूल नहीं गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो, ये सारी तो जो चीजें हैं ना, इस तरह के सीन बहुत सारे घरों में हुआ करते हूं।
0: दिखते हैं ऐसे सीन, और होता यूं है कि अगर हम काम में लगे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, बच्चे ने जिद की कि भाई आज मम्मी हमें पास्ता बना दीजिए, तो हमने जब काम में रहते तो हमने कहा ठीक है भाई पास्ता बोल रहा है तो बना देंगे, पर तब हम ऐसे ही उनसे वादा कर देते कि हाँ बना देंगे, पर पास्ता बनाने के लिए घर में सामग्री भी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: फिर अगर हमने पास्ता नहीं बना दिया तो फिर बच्चे जो है ना सारा घर सर पे ले लेते हैं।
1: हाँ।
0: और उनकी जिद के आगे पेरेंट्स जो होते हैं हतबल हो जाते हैं।
1: हम कई बार उसमें ऐसे उनको एक बात उनकी इधर उधर करने के लिए उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाता है, तो हम कहते हैं अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास है ना,
0: मेरा गुल्लक
1: उसमें से निकाल लीजिए आप, इस तरह से भी कहते हैं बच्चे।
0: तो यानी गुल्लक हमारे बचपन का मनी बैंक, या यूं कह लीजिए बड़े होने के बाद भी अगर घर में गुल्लक होना तो एक अलग ही प्रसन्नता रहती है कि जो कुछ भी इधर उधर घर में चिल्लर पैसे कुछ रुपए इधर पड़े हुए हैं तो हम झट से उसमें डाल देते हैं, तो हमें भी एक सुकून लगता है कि चलो हमारे पास इसमें तो बचत है। भले ही बड़े बड़े हमारे बचत खाते होंगे, बड़े बड़े हमारे FDs होंगे, पर ये जो छोटा सा गुल्लक होता है ना, ये बड़ा ही मासूमियत भरा होता है।
1: बिल्कुल। और एक सुकून सा देता है कि अगर कभी अचानक से कुछ छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास गुल्लक है, है ना? और इसी साथ में ये भी है कि हम जब बहुत सारी बातें होती घर में बैठे हैं तो कई सारे बातें निकलती, क्योंकि बरसात के दिन अक्सर बाहर जाना हो नहीं पाता, बातें बहुत सारी निकलती हैं, और कभी हम किसी की जद्दोजहद की बातें करते हैं, किसी की कोई प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में जिक्र निकल जाता है। तो आज के दिन हम कहानी पद्मश्री के खंड में बात करेंगे कुछ इसी तरह मंजमा जोगथी की,
0: जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं, और हम सारे श्रोताओं को उनके जीवन से जुड़ी कितनी परेशानियां थी और उसके बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पर अब क्या करना है दीपा?
1: देखो अब मैं क्या कर रही हूँ।

0: हाय मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना। धक धक धक बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: सोनाली कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में।
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम चाट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में,
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता
0: जी, ये बात तो 16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें परेशानियां हालात बहुत दिक्कतों भरे देखे उनके बारे में, ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है।
1: बेल्लारी के पास कल्लू कंबा गांव में मंजूनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है दीपा। ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजूनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा, और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन

0: रखकर नृत्य किया।
1: उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि ये जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी, इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है ये नृत्य है इसे सिखाएंगे। खुशी की बात ये है कि वे मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्पा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा जो उनके भाषा में उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
0: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सावली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे।
1: जी, और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आजाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगथी के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया।
0: जोगथी नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगथी नर्तकी लेट कर केवल मुंह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। यानी शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए,
1: बिल्कुल, और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए,
0: बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
1: वो आगे कहती है इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
0: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी बड़ी बात है ना दीपा,
1: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगथी नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती है कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
0: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में।
1: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
0: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
1: जी
0: एक पद्मश्री तक पहुंच गई। यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत
0: हो जाए,
1: मधुर गीत
0: सुनते हैं। गीत

0: सोनाली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा?
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना?
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना, चल सकता है ना?
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ

0: व दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी। जब वे मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देख रेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है। बहुत अच्छी यादें आपने साझा की है।
1: तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें।
0: हाँ हाँ,
1: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है। डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हजार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना, आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए।
0: तो गुल्लक हमें ये संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है
1: या आप कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत की जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
0: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना, इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताज़ा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैंक भी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है।
1: आजकल तो बहुत अलग अलग डिजाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा, आधा खर्च करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें, हाँ। कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है, या फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ।
0: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे बिल्कुल सही, आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए 10 रुपए देते थे। उन बच्चों, वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे, और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी। धीरे धीरे जब सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी दीपा की, उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
1: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है, और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप टिप सरोवर भरा है, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे, वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
1: बिल्कुल सही कहा, 1-1 रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
0: और दीपा ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
1: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था। हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे, वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी की गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे
0: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था।
1: बिल्कुल सही।
0: एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं, बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था।
1: और देखो, हाँ, एक और संदेश पढ़ लीजिए।
0: एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का एक पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
1: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है। तो एक अंतराल के बाद हम
0: फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना, बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दीवार होती है, दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
0: हमें तो एक गीत सुनना है,
1: तो सुनवाते हैं गीत।

0: से प्यार है।
1: भाई हमें तो हमारे श्रोताओं से और श्रोताओं को हमसे प्यार है
2: और हमेशा रहेगा।
1: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपए लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें और यह हमारा आशीर्वाद है।
2: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
1: बिल्कुल,
2: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई। हाँ। इस तरह से भी ये देखिए, यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती।
1: और
2: कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली, कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
2: किस तरह की परवरिश
1: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ, कि मुझे ये कहना है बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचाकर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है।
2: और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नजर सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता है ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए,

0: और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
1: कर रहे हैं।
0: एक साथी ने लिखा है दीपा कि बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता दादा दादी नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं।
1: बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती है कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है। इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक अलग विषय जो कि विचारणीय है।
0: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के, भाई गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी, यदि जिद की भी जाती तो भली भांति समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था और केवल भुनी हुई मूंगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था, ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है जहां पर तुम्हें योग है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करे, सोच समझ के उनसे वादा करना।
1: आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत सतर्क और सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
0: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है। कि बचपन में माँ ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं, और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था, एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया तब मैं चुप हुआ। बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहना था जब मैं 7 साल का था,
1: तो यानी सर्दी के जो मोटी कोट होते हैं
0: वो भी गर्मी में
1: पहनना इस तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं,
0: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुंच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुंच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है तो हो जाएगी, बस थोड़े ही दिन में इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीजों की में दिमाग चल जाता है सबका, और देखिए हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया दिया जाए।
1: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना जैसे रबड़ी वाला जो जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्योहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए। ऐसी भी शरारत
0: होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये बात सही है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको फ्राई करके दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे, मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी तो मैंने

0: हेडलाइट्स का प्रयोग करें, वाइपर्स की जांच शुरू करें, यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और उन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमी भाप को हटाने के लिए भी डिफॉगर ऑन करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं
1: जी,
0: तो संभल के चले। बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं तो
1: अभी भी ये, जबकि इतनी बातें और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं, फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं, केयरलेस हो जाते हैं।
0: तो लापरवाही ना बरते, जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
1: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
0: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना।
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो ज़िंदगी है
0: जी। बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या ज़िंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना
1: जी। बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंबे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टाइल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत जरूरी है।
0: और एक संदेश कहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहाँ पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य

0: शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहाँ पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
0: चलिए

0: सोनाली देखिए, अब वक्त तो वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का,
1: विदा लेने का। पहले श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे, इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: विराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए
1: दीदी? मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्या छोड़ दिया
1: दीदी? अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी, हम बहुत सुनते थे। पहले क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना, वो गजब के दिन थे।
1: क्या हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गांव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गांव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन के मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। सुनते हैं खुद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम साहब।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा बहुत बढ़िया, बारिश नहीं हो रही है?
1: राजस्थान में अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे, दक्षिण राजस्थान में तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया। हाँ। ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह है।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो ये बाजरा है, गंवार है, ये मोठ वगैरह की बुआई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी जी, खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी भी फसल अच्छी होती है।
0: बढ़िया। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है उनका गाना है, वो के रहूंगी तेरी,
0: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी जी बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
1: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरा दूसरी बार बात हो रही है वीर भारती में।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ। ममता दीदी
0: जी, सत्यप्रकाश जी बताइए, क्या हाल है आपका? इंदौर का क्या हाल है? बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है
0: जी।
1: और ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है। और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71,
0: अच्छा।
1: तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे? और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक है, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
1: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष,
0: अच्छा।
1: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो रही है,
0: हाँ।
1: तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं,
0: हाँ।
1: कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें, और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हो, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पर जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं।
0: बिल्कुल घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी

का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया। बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा, तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी, तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई? तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत में जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली है जोधपुर जैसलमेर, उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है?
1: उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह।
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह, और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
0: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी, और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
1: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
0: जी हाँ।
1: गाना आज का मेरा जो पसंदीदा है वो कुदरत फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी जो है फेवरेट सिंगर है, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
0: और मुकेश के गाने?
1: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता
0: हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लगानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा।
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है, क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें दिखे।
0: जी जी
1: दीदी, मैं
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, इला अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं मेरे।

0: किया, ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा थ्योरी, कभी मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: हरे वंश

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, पराथिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं। कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है, और साथ में हमारे जो किसान भाई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी अमृत की तरह है, सारा कुछ पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना।
1: जी जी जी।
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह आएगा ये मेरे लिए एक काफी वरदान साबित है, कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001-07-2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये एक हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ की कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी।
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हो रही है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
0: जी,
1: नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे।
0: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
1: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रकृति के विरुद्ध काम करना कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो, प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
0: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे, वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एच बिहारी का, और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
0: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: प्यार भरा नमस्कार
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो हेलो फरमाइश सुनने वाले हो प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं।
1: कैसा है मुंबई में मौसम? कैसा है इधर? बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोले तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है, और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना। तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं, त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है, कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना।
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है, ठीक है?
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही
0: जाता है बिल्कुल। और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में बताइए।
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है आसाम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
0: मतलब खूबसूरती का आलम है। तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए।
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ, ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए, ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा।
0: जी जी जी,
1: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी।
0: जी बिल्कुल, देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल।
1: त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर, देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या।
0: तो ये शक्तिपीठ है
1: बिल्कुल।
0: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू, वो नाम आपको पता है?
1: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
0: जी।
1: और उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
0: राहुल देव बर्मन। तो इसलिए

0: त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए तो।
1: जी जी।
0: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरो का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पेरिस से, और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरूर सुल्तानपुरी जी।
0: जी गीतकार
1: संगीत तैयार किया है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेस्टू से अनिल रमा गुप्ता गोन।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोन और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोन,
0: तो
1: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोन।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
1: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। दो तीन दिन पहले तो बहुत गर्मी थी,
0: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
1: नहीं नहीं अभी उतना नहीं है, जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, तो उतनी बरसात इधर उत्तर

0: प्रदेश में कम हुई है बरसात
1: जी। बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
0: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन

0: आप जान ही रही है कि अशोक स्तंभ में राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में।
1: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है। तो इनमें से आपको क्या शौक है, क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
0: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू,
1: अरे वाह क्या बात,
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो।
1: तो गा के सुनाई ये गनवा।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
0: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घिरा बदला, ए आर रहमान जी जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल।
1: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कुंडलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी जी, बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है, याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका।

0: बरेली के बाजार में।
1: और बरेली की और कोई खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
0: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
1: अच्छी बात है। और अपने काम काज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
0: मैम जी अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
1: जरी का काम करते हैं मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े कुर्ते क्या बनाते हैं?
0: मैम जी हम सूट भी बना लेते हैं, साड़ियाँ भी बना लेते हैं, आए पर शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियाँ भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम करदाना मोती ये भी बना लेते हैं।
1: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर?
0: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की
1: शादियों में।
0: हाँ मैम जी
1: बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: हाँ जी मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपने पसंद का ये गाना।

0: तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662। मुंबई का एसटीडी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर रहा है। देश की आकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत जो अधिक विकास और अधिक उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया और मौजूदा सुरक्षा स्थिति तथा सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का यह पहला दौरा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान की मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि पिछले साल कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से वल्लभ भवन में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी, एनीमिया नियंत्रण, कुपोषण, बाल विवाह की रोकथाम और उच्च जोखिम गर्भावस्था के प्रभावी प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं और भारत इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का 4वां मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब युवा श्रोताओं के लिए हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम हमारे जबलपुर केंद्र का योगदान है।

0: नमस्कार दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सफर में हैं, ऑफिस से लौट रहे हैं या बस यूं ही रेडियो सुन रहे हैं तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ जरूर बिताइए। मैं हूं अनमोल द्विवेदी
1: और मैं हूं आद्या नायक और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अपना युवा कार्यक्रम युववाणी, जहां हर बार होती है नई सोच, नए विषयों पर बातचीत और ढेर सारी प्रेरणा।
0: लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले आज आपके लिए हैं दो मजेदार सवाल। देखते हैं किनके जवाब आपको पहले से पता हैं या नहीं।
1: हमारा आज का पहला सवाल है, भारत में यदि किसी के साथ ऑनलाइन ठगी या साइबर अपराध हो जाए तो शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है।
0: और दूसरा सवाल है, भारत के किस महान नेता को पूरे देश में प्यार से बाबूजी कहा जाता था।
1: अगर आपको जवाब पता है तो बहुत बढ़िया,
0: और अगर नहीं पता तो चिंता की कोई बात नहीं, इन दोनों सवालों के सही जवाब हम आपको कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे।
1: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म टू स्टेट से और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा ने।
2: अखियां करे जी हजूरी,

0: अच्छा आद्या, एक सवाल पूछूं?
1: हाँ अनमोल, लेकिन पहले ये बताओ कि सवाल आसान है या गूगल करना पड़ेगा?
0: अरे गूगल वाला नहीं है, दिमाग वाला है। अगर किसी युवा को उसका मोबाइल और बटुआ दोनों एक साथ खो जाए तो पहले वो क्या ढूंढेगा?
1: आजकल तो मोबाइल, क्योंकि बटुए में पैसे होंगे लेकिन मोबाइल में पूरी दुनिया ही रहती है।
0: बिल्कुल, दोस्त, परिवार, फोटो, यूपीआई, नोट्स। आज का युवा सुबह अलार्म से कम मोबाइल के नोटिफिकेशन से ज्यादा उठता है,
1: और रात को तो बस 5 मिनट और कहते कहते पता ही नहीं चलता कि कब एक घंटा निकल जाता है।
0: हाँ, और रील्स देखने बैठो तो पहले खाना ठंडा होता है, फिर माँ की आवाज गर्म हो जाती है।
1: मजाक अपनी जगह अनमोल, लेकिन डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी सच में आसान बना दी है। ऑनलाइन पढ़ाई, नई भाषा सीखना, जॉब के लिए आवेदन, यहाँ तक कि घर बैठे बैठे अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना, सब कुछ बस एक क्लिक दूर है।

0: आज का युवा सिर्फ कंटेंट देख नहीं रहा है, कंटेंट बना भी रहा है। सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, रोजगार भी पैदा कर रहा है।
1: लेकिन जहाँ इतनी रोशनी होती है वहाँ थोड़ा अंधेरा भी होता है।
0: बिल्कुल, डिजिटल दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी मेहनत की कमाई पर बस एक क्लिक की दूरी पर नजर लगाए बैठे रहते हैं।
1: इसीलिए अगर कोई मैसेज आए, कंग्रेचुलेशंस, आपने करोड़ों रुपए जीत लिए हैं, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए, मैंने आखिर किया क्या था।
0: हाँ, बिना टिकट खरीदे अगर लॉटरी लग रही है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कहानी में विलन जरूर है।
1: और ओटीपी, उसका मतलब ही समझ लीजिए, ओनली तुम पढ़ोगे, किसी और को नहीं बताएंगे।
0: अरे वाह, ये फुल फॉर्म तो साइबर पुलिस को भी पसंद आ जाएगा।
1: पासवर्ड ऐसा रखिए जो दूसरों के लिए पहेली हो लेकिन खुद के लिए याद रखना आसान हो।
0: मेरे हिसाब से डिजिटल दुनिया बिल्कुल समुद्र जैसी है, जिसे तैरना आता है उसे नए रास्ते मिलते हैं, और जो बिना कुछ सोचे कूद पड़ता है उसे लहरें सबक सिखाती हैं।
1: वाह अनमोल, क्या बात कही है। दोस्तों, डिजिटल दुनिया से दोस्ती कीजिए लेकिन आंखें खोलकर।
0: सीखिए, बढ़िए, सपने पूरे कीजिए, और सबसे जरूरी, ऑनलाइन जितने एक्टिव रहिए उतने ही सतर्क भी रहिए,
1: क्योंकि स्मार्टफोन तो सबके पास है लेकिन स्मार्ट यूजर बनना हमारे अपने हाथों में ही है।
0: तो साथियों, इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग, जिसे लिया गया है फिल्म बर्फी से और जिसे आवाज दी है निखिल पॉल जॉर्ज, श्रेया घोषाल और प्रीतम ने।

0: आद्य, कभी कभी ना इतिहास की किताबों में कुछ ऐसे नाम मिल जाते हैं जिन्हें पढ़ते ही लगता है, यार इनके बारे में पहले क्यों नहीं पढ़ा था।
1: बिल्कुल अनमोल, और आज जिस व्यक्तित्व की हम बात करने जा रहे हैं वो ऐसे ही है, एक ऐसा नाम जिसने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और सेवा को अपना जीवन।
0: जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं बाबू जगजीवन राम, जिन्हें पूरा देश प्यार से बाबूजी कहता था।
1: वैसे अनमोल, बाबूजी सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है?
0: घर वाले बाबूजी जो कहते हैं पंखा बंद कर दो, बिजली का बिल कौन भरेगा।
1: लेकिन हमारे आज के बाबूजी सिर्फ एक परिवार के नहीं पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं।
0: हाँ, उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। बचपन आसान नहीं था, समाज में भेदभाव था, मुश्किलें थी, लेकिन उनके हौसले उनसे कहीं बड़े थे।
1: कहते हैं कि मुश्किल रास्ते अक्सर मजबूत इंसान बनाते हैं। बाबू जगजीवन राम ने भी चुनौतियों को रुकावट नहीं सीढ़ी बना लिया था।
0: उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो उन्होंने शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ा,
1: और यही शिक्षा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बदली बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की नई राह भी बनाई।
0: आजादी की लड़ाई हो या भारत का निर्माण, हर जगह उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उन्होंने कृषि, रेल और रक्षा जैसे कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया।
0: सन 1971 के भारत पाक युद्ध के समय वे भारत के रक्षा मंत्री थे। उस दौर में भारत ने ऐतिहासिक विजय हासिल की जो देश के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय था।
1: लेकिन मुझे उनकी सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या लगती है पता है अनमोल, कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि परिस्थितियां खराब हैं इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा कहा कि परिस्थितियां जैसी भी हो काम नहीं रुकना चाहिए।
0: सच है, जिंदगी हमें कहाँ से शुरू करनी है ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कहाँ तक पहुँचना है ये काफी हद तक हमारे फैसलों पर निर्भर करता है।
1: तो दोस्तों, अगर कभी लगे कि रास्ता कठिन है तो बाबू जगजीवन राम का जीवन याद कीजिए। संघर्ष, मेहनत, शिक्षा और सेवा, इन्हीं चार शब्दों में उनकी पूरी जिंदगी समाई हुई है।
0: और शायद यही वजह है कितने वर्षों बाद भी लोग उन्हें सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में याद करते हैं।
1: बाबू जगजीवन राम जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जब तक है जान से और जिसे आवाज दी है राघव माथुर और शिल्पा राव ने।

0: आद्या, एक बात बताओ, आजकल सबसे ज्यादा भरोसा लोग किस पर करते हैं? दोस्त पर या पासवर्ड पर?
1: पासवर्ड पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आधे लोगों का पासवर्ड आज भी 12345 या password@123 ही होता है।
0: लेकिन सच कहूं, आज हमारी जेब में सिर्फ मोबाइल नहीं होता, पूरा बैंक भी होता है, पहचान भी होती है और कभी-कभी हमारी आधी जिंदगी भी।
1: बिल्कुल अनमोल, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, सब कुछ उसी छोटे से फोन में रहता है, इसीलिए उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
0: हाँ, वैसे तुम्हारे पास भी ऐसे मैसेजेज आते होंगे ना कि आपकी केवाईसी आज रात 12 बजे बंद हो जाएगी। ऐसे मैसेज पढ़कर लगता है इन लोगों को हमारी बैंक से ज्यादा हमारी चिंता है।
1: यही तो उनकी चाल होती है, वो हमें डराते हैं या फिर लालच देते हैं ताकि हम बिना सोचे समझे क्लिक कर दें।
0: तो क्या करें, मोबाइल चलाना छोड़ दें?
1: अरे नहीं, मोबाइल क्यों छोड़े, बस थोड़ी समझदारी रखिए। जैसे ओटीपी किसी को ना बताना, अननोन लिंक पर जल्दबाजी में क्लिक ना करना और पासवर्ड ऐसा रखना जिसे गेस करना आसान ना हो।
0: अच्छा, और मैं एक आदत तो हमेशा अपनाता हूँ, कोई भी मैसेज पढ़कर अगर बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा डर लगे तो तुरंत विश्वास नहीं करता, पहले सोचता हूँ फिर जांचता हूँ, उसके बाद ही कोई कदम उठाता हूँ।
1: वाह अनमोल, यानी पहले वेरीफाई फिर ट्रस्ट, ये रूल तो सबको याद रखना चाहिए।
0: और अगर कभी गलती से ऑनलाइन फ्रॉड हो भी जाए तो शर्माने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन जितनी जल्दी शिकायत करेंगे उतनी जल्दी मदद मिलने की संभावना और बढ़ जाती है।
1: मुझे लगता है कि आज साइबर सिक्योरिटी भी हेलमेट जैसी हो गई है। पहले लोग कहते थे इतनी सी दूरी है, हेलमेट की क्या जरूरत है, लेकिन आज वही बात कुछ लोग इंटरनेट पे भी कहते हैं, अरे मेरे साथ थोड़ी होगा।
0: और जब तक समझ आता है तब तक नुकसान हो चुका होता है, इसलिए हेलमेट

0: सड़क पर जरूरी है और साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दुनिया में।
1: तो दोस्तों, मोबाइल स्मार्ट है, एप्स भी स्मार्ट है, अब बारी हमारी है स्मार्ट यूजर बनने की।
0: तो सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और डिजिटल दुनिया का आनंद लीजिए पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म डॉन से और जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।

0: तो दोस्तों, देखते ही देखते आज का युववाणी अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है
1: और अब समय है कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए उन दो सवालों के जवाब देने का।
0: तो साथियों, आज का पहला सवाल था, साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों, जिसका सही जवाब है 1930।
1: और हमारा दूसरा सवाल था कि भारत के किस महान नेता को पूरे देश में प्यार से बाबूजी कहा जाता था, जिसका सही उत्तर है बाबू जगजीवन राम।
0: तो दोस्तों, अब हमें दीजिए अनुमति, अगले अंक में मिलेंगे कुछ नए विचार।

0: नई जानकारी और ढेर सारे सकारात्मक ऊर्जा के साथ।
1: तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और डिजिटल दुनिया में स्मार्ट ही नहीं सुरक्षित भी रहिए। अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त आद्या नायक
0: और आपके रेडियो साथी अनमोल द्विवेदी को।
1: नमस्कार।

FM 102.6 MHz पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं संगीत सरिता। शुरुआत करते हैं सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ।

यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से संगीत सरिता, और आइए अब सुनते हैं ए हरिहरन को। रचना इब्राहिम अश्की की है।

अभी आप सुन रहे थे संगीत सरिता FM 102.6 MHz पर, यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है अगला प्रसारण, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। करें थोड़ा सा इंतजार।

0: साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिस्त्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती प्रोग्राम तराने नए पुराने के शेष की

0: किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म से। गुलजार ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने।

0: येसुदास और हेमलता की आवाजों में चित्तचोर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है।
1: तराने नए पुराने।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं सदाबहार गीत। दोस्तों, आज मशहूर अदाकार संजीव कुमार जी की जयंती पर आकाशवाणी परिवार की तरफ से उन्हें सादर नमन करते हैं। आप जानते होंगे कि उनका वास्तविक नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। हर आयु और चरित्र को जीवंत करने वाले सिनेमा के ये एक बहुमुखी प्रतिभा के अभिनेता थे। सुनते हैं उन्हीं की फिल्म आंधी से लिया गया ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, ये फुहारे।
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

श्रोताओं, फिल्म कोशिश और दस्तक के लिए संजीव कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। शोले के ठाकुर, नए दिन नई रात के नौ रूप और अंगूर की कॉमेडी उनके अभिनय के शिखर हैं।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार गीत FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आइए सुनते हैं उर्मिला पांडे और उनकी सखियों को।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर GST की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
4: अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, और आइए अब सुनते हैं प्रभु सिंह अनुज को।

0: इस लोकगीत के साथ ही लोक रंग का ये सफर बस यहीं तक। FM 102.6 MHz पर आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, करें थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय

0: प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुँचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की कार्यक्रम विवरण में। सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रमों पर एक नजर। अब से कुछ ही पलों बाद यानी शाम 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इनका अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी पर केंद्रित कार्यक्रम किसान वाणी।

रात 8 बजे सुनेगा चित्रपट संगीत और 8:20 पर होगा संगीत सरिता। मन चाहे गीत सुने जा सकते हैं रात 9 बजे से। रात 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। 11 बजे से हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और समाचार संध्या रात 8:45 पर। इन कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करते हैं।

अब कल के कुछ खास कार्यक्रम। श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ कल सुबह 6:30 बजे। गायक स्वर होंगे वाणी जयराम और राजेंद्र काचरू के। हमारा नियमित दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह आप सुनते हैं हर रोज सुबह 7 बजे से। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन गांधी चर्चा सुनिएगा 7:45 पर सुबह। मनचाहे गीत सुबह 7:20 पर। सवा 8 बजे होगा सुबह लोक संगीत। 8:30 बजे सुनिएगा नाटक एक पेड़ एक बच्चा एक परिवार। आलेख और प्रस्तुति सुदर्शन कुमार की होगी। जिले की चिट्ठी आप सुनते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 10 बजे से। कल सुबह 10:05 पर सुनिएगा गुलदस्ता। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा कल सुबह 11 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लव्स और लम्हे सुनिएगा कल शाम को 5:30 बजे से।

तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। FM 102.6 MHz पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में हाईसीज मत्स्य दोहन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर जिले के किसान सम्मेलन में शिरकत की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में यह उनकी तीसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। प्रधानमंत्री ने भारत ऑस्ट्रेलिया के साझा खेल और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी जिक्र किया।
1: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर में हाईसीज मत्स्य दोहन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज भी लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति ने देश भर के 10 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और मछुआरों को लेटर ऑफ ऑथराइजेशन सौंपे। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत की समुद्री यात्रा में नए अध्याय की शुरुआत है। इससे मछुआरे गहरे समुद्र के संसाधनों का सतत उपयोग कर सकेंगे। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। उन्होंने युवाओं से मत्स्य पालन को आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 4 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
2: एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान। मुझे गर्व है, इसी महीने कोशिश करेंगे विधानसभा में एक समान कानून मध्य प्रदेश में लगते रहेगा। मध्य प्रदेश में
0: प्रदेश में दतिया विधानसभा उप निर्वाचन के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक विजय भारती और पुलिस प्रेक्षक के त्यागराजन ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। प्रेक्षकों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम और गणना कक्ष का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान दतिया में फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम को सी विजिल और ESMS ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। इस ऐप के जरिए आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने वल्लभ भवन में मुलाकात की। बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर घटाने, एनीमिया नियंत्रण और बाल विवाह रोकथाम पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी विभागों में समन्वय जरूरी है। उन्होंने यूनिसेफ से मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता निर्माण में सहयोग का आग्रह किया। यूनिसेफ प्रतिनिधि जैस्पर मिलर ने राज्य सरकार के सुमन रोडमैप और मदर एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट्स की पहल की प्रशंसा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक।

0: का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज सुबह रतलाम पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह ने उन्हें निर्माण कार्यों की जानकारी दी। श्री गडकरी ने पैचवर्क का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का करीब 244 किलोमीटर का हिस्सा प्रदेश से होकर गुजरता है। ये राज्य के मालवा क्षेत्र के तीन प्रमुख पश्चिमी जिलों रतलाम, मंदसौर, झाबुआ को सीधे देश की राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय राजधानी से जोड़ता है। प्रदेश के जेल विभाग में करीब 10 साल बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई है। जेल मुख्यालय ने विभिन्न संवर्गों में पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। इनमें सहायक ग्रेड 1, स्टेनोटाइपिस्ट, लेखपाल और उप अधीक्षक जैसे पद शामिल हैं। जनसंपर्क अधिकारी राजेश ताहिमा ने बताया कि आने वाले समय में अन्य प्राप्त पात्र कर्मचारियों के आदेश भी चरणबद्ध रूप से जारी होंगे। पश्चिम मध्य रेलवे की जबलपुर मंडल में कल विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश सगर के नेतृत्व में हुआ। गोंडवाना एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनों में सघन जांच की गई। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले 66 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रेलवे ने जुर्माने के रूप में करीब 61,000 रूपये वसूले। भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत कंट्रोल कमांड रूम बनाने को कहा है। कलेक्टर ने आज सांदीपनी विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा की। उमरिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। परिवार अनूपपुर से चित्रकूट जा रहा था। घायल युवती को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इस साल अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। सिंगरौली कलेक्टर की पहल पर अदानी फाउंडेशन बधौरा ने महिलाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिलाई मशीनें दी हैं जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वितरण केंद्र बैतूल द्वारा 10 जुलाई को संपर्क अभियान के तहत कोलगांव में शिविर आयोजित किया जाएगा। देवास के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आज मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में लगातार बारिश के बीच कई निचले इलाकों वाले गांवों में किसानों की फसल पर जलभराव का संकट खड़ा हो गया है। इन गांवों में सोयाबीन की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गए। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज कोलारस में मृदा परीक्षण केंद्र और एसडीओ कृषि कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अशोकनगर जिले में आगामी समय में विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के दौरान शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। खंडवा जिले की बोरगांव चौकी पुलिस ने गौवंश तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगर मालवा कलेक्टर ने आज जिले के भ्रमण के दौरान ग्राम कवराखेड़ी में किसान प्रकाश तांगे के खेत में तरबूज के बाद लगाई गई लौकी की फसल का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तानी।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान श्रोता भैया बिन्नारों को संतोष पाठक
1: और नीरज सोनी की
0: राम राम, राम। नीरज भैया, अपन एक कार्यक्रम में खेती किसानी पशुपालन बागवानी से जुड़ी उपयोगी चर्चा रोज करते हैं, जे में अपने किसान भैया रहे खेती किसानी के काम अच्छे से कर सकें।
1: बिल्कुल सांसी कह दे संतोष भैया,
0: और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने किसान भैया हरों को मिल पावे। भैया हरों जो ही एक किसान वाणी कार्यक्रम को उद्देश्य भी है।
1: निश्चित रूप से संतोष भैया, अपन जिन उद्देश्यों को लेके अपने कार्यक्रम में किसान भैया हरों से रोज बतकाव करत हैं, चर्चा करत हैं, हमारे किसान भैया हरें भी हमसे दो कदम आगे कहा है।
0: बिल्कुल,
1: अपने कार्यक्रम की समय से बाट ही रह रही थे कि आज के कार्यक्रम में उनको का सुन भी मिल रहा है।
0: बिल्कुल भैया,
1: भैया रो आज अपने दिन गुरुवार की साप्ताहिक क्रम में आपको हलो किसान वाणी सुनवे मिल है, जी में ये समय की खेती किसानी पशुपालन बागवानी की न केवल समस्याओं के समाधान आप जान पे हो, बल्कि आपके मन में जो किसानी नवाचार को लेके जिज्ञासाएं थी उनके समाधान भी प्राप्त हुई है। मनो किसान वाणी में शुरुआत करते हैं वे अपने बतकाओ से संतोष भैया। भैया रो बस्कारो शुरू हो गए है, सो अपन किसान भैया रे ई बस्कारी में जो फलदार वृक्ष लगाओ चाहते हैं तो उनको कौन कौन किस्म की वृक्ष लगाओ चाहिए, कौन कौन बातों को ध्यान रखो चाहिए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखत भाई आज हमारे संतोष भैया ई कार्यक्रम में ये विषय की चर्चा लेके आए हैं। सो भैया रो आज के कार्यक्रम में अपनो विषय है बस्कारी के मौसम में वृक्षारोपण कैसे करें, किन किन बातों को ध्यान रखें।
0: बिल्कुल नीरज भैया, और एक अलावा जो अपना साप्ताहिक क्रम रहते हैं उसके बारे में आपने बताई दई, और उसके अलावा नीरज भैया मनोरंजन को सुवाए के रोज करते हैं करवाते हैं सो आज भी करवाएं, और स्थानीय नाज मंडी में आज नाजों के का भाव रहे सो वो भी अपन बते हैं, मौसम को हाल भी बते हैं, मनो बिना देरी करें अपन चर्चा को आगे बढ़ाते।
1: बिल्कुल संतोष भैया, तो किसान भैया रो अपने ये बस्कारी के मौसम में वृक्षारोपण में कौन कौन बातों को अपन ध्यान रखने ही विषय की चर्चा अपन लेके आए हैं, ताकि अपन अपनी जो धरती जो उनको अपन वसुंधरा की थे बार ना केवल हरी भरी बनी रहे, बल्कि हम जितनी ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण कर पे हैं तो उको फायदा भी हमें को मिलने हैं। वो फायदा संतोष भैया कई रूपों में मिलने का हो, जैसे कि फल फूल हो गए, औषधि मसाले लकड़ी, माने तमाम बेजरूरत और उपयोग की चीज़ें हमें मिलने हैं इकारत से, और संगे संगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ऑक्सीजन जो हम सब के जीवन के लाने जरूरी है बासु पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। उतई पेड़ जो है अपने पशु और पक्षियों के लाने एक सुरक्षित आश्रय को भी काम करते हैं।
0: बिल्कुल नीरज भैया, और जो पेड़ पौधा हैं वे हमें ऑक्सीजन देते हैं जैसी आपने बताई, और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वातावरण को शुद्ध बनाऊत हैं। भैया हरो, पेड़ पौधों पे ही अपनो जीवन निर्भर है, पेड़ पौधा हमारे चारों तरफ के वातावरण को हरो भरो बनाऊत हैं, पेड़ों से ही हमें छाया ठंडी हवा ऑक्सीजन मिलाते हैं। सुजा बात तो सभी अच्छे से जाना थे नीरज भैया, जो भी पेड़ अपन और लगावो चाह रहे हैं अबे, तो उन पेड़ों की किस्मों के बारे में जानकारी ले लूँ। अगर आप औरों को अपने खेत की मेड़ों पे पेड़ लगाने हैं तो उद्यानिकी विभाग जाके विशेषज्ञों से जानकारी ले ली लेने कहा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
0: जैसी सलाह भी देवे सो अपन खून की सलाह के अनुसार काम करने कहा नीरज भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे पहले तो भैया रो जगह को चयन करने, ऐसी जगह अपन को फलदार वृक्ष लगा भी जाने कहा, जहाँ की माटी जो है वो उपजाऊ हो, कैसे पौधा अपनो भोजन जो है वो माटी के बिना नहीं कर सकता। अपन कल्पना भी करें अगर उपजाऊ

0: मिट्टी के बगैर फलदार वृक्ष या दीगर कोई भी वृक्ष लगावे की तो वह पूरी नहीं हो सकत। सुभैयारो अपनी जमीन उपजाऊ भाव चाहिए ऐसी जगह की अपन खो चयन करने कहा हो, और फिर उनकी देखभाल भी करत भाई उनको बड़ो करने कहा हो, माने जो नहीं है कि अपन ने अकेले वृक्ष लगा दो वो फुर्सत हो गए।
1: बिल्कुल,
0: तो निश्चित रूप से भैया हरो जहाँ अपन पेड़ लगा रहे हैं फलदार वृक्ष लगा रहे हैं उतने ना केवल जगह उपजाऊ भाव चाहिए संगे संगे अच्छी किस्मों को भी अपन को चयन करने ताकि उत्पादन अच्छो मिल सके।
1: बिल्कुल सास, ये कह रहे नीरज भैया। और नीरज भैया अच्छो उत्पादन लेवे के लाने उनकी पूरी पूरी जैसे आपने कही देखभाल करने कहा ही, अच्छो खाद डालने हैं, रोग बीमारी न हो पावे इन सब बातों को ध्यान रखने हैं। और भैया रो एक बार फिर कह रहे हैं कि अपन को कोनो भी काम करवे के पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लेने का है नीरज भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और एक सलाह है किसान भैया रो ये बसकारी के मौसम में आपके लाने लेके आए हैं कि बाढ़ के समय हम कौन कौन सावधानियां बरत सकते हैं। भैया रो बाढ़ के पानी में प्रवेश नहीं करने, सिर्फ 6 इंच पानी ऐसो रहा था कि भी एक व्यक्ति के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, और लगभग 2 फीट पानी तो जो है भारी से भारी वाहन को बहा ले जावे में भी सक्षम है।
1: बिल्कुल,
0: बाढ़ के पानी में जावे को जोखिम बिल्कुल नहीं उठाने, एक छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा हो सकते है। भैया रो अगर बहुत ही आवश्यक है तो बाढ़ के पानी में जावे के पहले उपयुक्त तो सुरक्षा जैसे जूता इनको पहन के जाने, और पानी की गहराई जांच भी के लाने लकड़ी या डंडा आदि को उपयोग करने।
1: बिल्कुल,
0: खुले सीवर मेन होल और नालियां इनसे विशेष तौर पर सावधान रहने हैं। कैसे भैया रो गिरत पानी में जी दिखाई नहीं देते और जी बड़ी दुर्घटना को कारण बनते हैं। रात के समय खासतौर पर हमारे किसान भैया रहे अगर आवश्यक ही है खेत खलिहान में जाने हैं कछु करने हैं तो टार्च को उपयोग करने कहो, अपने आसपास साफ सफाई को भी वस्कारी में ध्यान रखने ताकि बीमारी ना फैल सके, ताजो पको भव सूखो भोजन अपन को करने और केवल सुरक्षित उबलो भव और क्लोरीन युक्त पानी पीने। किसान भैया हरो बाढ़ से सतर्क रहने हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी नीरज भैया। अभी एक जानकारी और हम दे हैं और उको विषय है कैच द रेन अभियान से जल संचय को संकल्प ले। तो नीरज भैया ये अभियान के तहत हर घर सोसाइटी वर्क प्लेस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाने हैं, सही जगह चुनकें, रिचार्ज फिट व सॉफ्ट बनाए और अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करा के ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुए में मदद करवे। भैया हरो बावड़ी कुआ व पारंपरिक जल संरचनाओं को संवारें और इनको इस्तेमाल के लायक बनाएं।
0: बिल्कुल सासी कई
1: मानसून के जल का अधिकतम संचय हो सके, ये किलाने आसपास के तालाबों जलाशयों उसे गाद निकार के जल धारण क्षमता बढ़ाने का है।
0: बिल्कुल, संगे संगे भैया हरो अगर हो सके तो अपन को अपने गांव में जो नाली नरवा ऐसे हैं जो सिंचाई के काम में आ सकते हैं इनमें अधिक से अधिक पानी रोकने कहा। और संतोष भैया अब
1: हाँ
0: सुनत है कछु जी जरूरी संदेश और लौटत है अपनी चर्चा पे।
1: हाँ,
2: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
3: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
4: ये मेरी नहीं 287 मेरी चाय की खुशबू है, तन मन जगाए
2: बात बन जाए
4: 287 मेरी चाय।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: हर

0: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
1: कोई डर नहीं,
0: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: संदेशों के बाद एक बार फिर से सभी किसान श्रोता भैया बिन्नाहरों को एक कार्यक्रम में स्वागत है। तो नीरज भैया, चर्चा हो गई अपनी, संदेश भी सुनने वाला है। अब आते हैं अपन साप्ताहिक क्रम जो अपने रहते हैं हेलो किसान वाणी एक ही तरफ, और सुनवाते हैं अपने किसान भैयाओं को आज को जो हेलो किसान वाणी कार्यक्रम।

0: किसान वाणी कार्यक्रम में प्रतिदिन किसान भैयारो आप हो किसानी पशुपालन बागवानी की जानकारी दई जात है और एक क्रम में दिन गुरुवार बहुत महत्वपूर्ण रहा थे। कासिम भैयारो दिन गुरुवार को जो साप्ताहिक क्रम रहा थे हेलो किसान वाणी उमें आप किसान श्रोता भैयारों से सीधे फोन के माध्यम से जुड़ के आपकी खेती किसानी पशुपालन बागवानी की जो समस्याएं हैं हम प्राप्त करते हैं और अपने स्टूडियो में पधारे भाई विशेषज्ञों से आपको बहुत उम्दा और उपयोगी से समाधान दुआत कहने। भैयारो आज के अपने हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में भी विशेषज्ञ पधार चुके हैं। श्री विपिन जैन साहब पधारे हैं जो कि BTM है आत्मा परियोजना कृषि विभाग सागर में और हमारे पशुपालक किसान भैयारों की समस्याओं के समाधान के लाने भी स्टूडियो में डॉक्टर साहब पधार चुके हैं। डॉक्टर BK शर्मा जो कि पशु चिकित्सक हैं जिला पशु चिकित्सालय सागर में। सबसे पहले तो हम अपने स्टूडियो में पधारे विशेषज्ञों को बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आप तमाम किसान श्रोता भैयारों को भी बहुत बहुत स्वागत है और भैयारो अब बगैर देरी करें आपसे जुड़ रहे हैं प्राप्त करते हैं आपकी समस्याएं और पहुंचाते हैं आप तक बहुत उम्दा और उपयोगी से समाधान। हेलो
1: हेलो किसान वाणी
0: बिल्कुल सही जगह फोन लगो भैया स्वागत कर रहे हैं अपने साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में आपको।
1: गुड्डू चौधरी बोल रहे बमोई झूला जिला सागर से।
0: गुड्डू भैया सुनाओ क्या चल रहा है।
1: हम जो पूछ रहे हैं कि सोयाबीन को सही समय कितने दिनों में दवाई छिड़के कचरा।
0: बिल्कुल उपयोगी प्रश्न है और जरूरी जानकारी भी है आपको ये विषय पे जानकारी अपने स्टूडियो में पधारे श्री विपिन जैन साहब दे रहे हैं सुनो ध्यान से।
1: जैन साहब नमस्कार।
2: नमस्कार भैया कितनी जगह में लगाई है।
1: सोयाबीन लगी अपनी 22 एकड़ में।
2: कितने दिन की फसल हो गई है।
1: 12 दिन की हो गई।
2: गुड्डू भैया यदि सही समय पे खरपतवार नियंत्रण ना हो तो ये उपज का अपना 30-40% नुकसान हो जाता है तो प्री इमरजेंस भी डाल सकते हैं चूंकि अब बुवाई के 12 दिन हो गए हैं तो बुवाई के 15 से 20 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और जैसे ही 15 दिन होते हैं 15 दिन से 20 दिन के अंदर अपन को दवाई डाल देना चाहिए। अब दवाई डालते समय सबसे विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए क्या है दवाई जो मात्रा होती है जो रिकमेंडेड मात्रा है वही मात्रा डालना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रहता है घोल बनाने का और घोल बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है उसका छिड़काव करने का। अब घोल में जिस प्रकार से अपन जो दवाई लाए हैं और जो सीरियल नंबर से दवाई रहती है उस हिसाब से उसको पहले डालना है ना पता चला कोई व्यक्ति चिपको पहले डाल देता है या अन्य जो कॉम्बिनेशन है पहले डाल देते हैं तो उससे जो दवाई का प्रभाव है कम हो जाता है और यदि सही क्रम में आप घोल ना बनाए तो वो दवाई है वो फट भी जाती है। इसके बाद जब अपन नीदा नाशक डालते हैं तो किसान भाई इतना विशेष ध्यान नहीं रखते हैं नोजलों का विशेष ध्यान नहीं रखते। जब अपन खरपतवार के लिए दवाई डालते हैं तो कट नोजल का प्रयोग करना चाहिए ठीक है। खरपतवार नाशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जब तक वो दवा पौधों पे जो कचरा रहेगा उसको पूरी तरह से नहीं भिगोगी तब तक वो काम नहीं करती है। तो इसके लिए किसान भाई ध्यान रखें कि कम से कम 1 एकड़ में 150 लीटर पानी डालना चाहिए। अब चूंकि एक और विशेष बात है इस समय जो मौसम रहता है

0: बारिश का रहता है। तो इसके लिए जो अपना चिपको वगैरह रहता है, ठीक है, वो अपन को मिला के डालना है, जिससे उसकी इफिशियंसी बढ़ जाए और वो कम समय में अच्छा काम करे। ठीक है गुड्डू भैया
1: जी, महत्वपूर्ण जानकारी दिलाने जयंत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आकाशवाणी की किसान वाणी कार्यक्रम से जुड़े। हेलो
3: हेलो,
2: स्वागत कर रहे भैया आपको साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में।
3: जी नमस्कार।
2: नमस्कार, कहा भैया स्पीकर फोन चालू करें हो का?
3: नहीं मतलब है सर।
2: तो थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ी नायमाय हो?
3: हाँ क्या बात है, मिल रहा है। नमस्कार सर।
2: नमस्कार भैया, स्वागत कर रहे हैं आपको, अपना परिचय दे दो।
3: सत्यपाल लोधी त्रिजा से।
2: सत्यपाल भैया सुनाओ, का चल रहा है?
3: अरे तो सर बारिश हो रही है बहुत जम के।
2: तो ठीक हो रहा हो यार, बोनी तो हो गई होगी?
3: हाँ बोनी तो हो गई।
2: बताओ कछु समस्या है का?
3: सर समस्या है अपन और 10,000 भाई जी।
2: हाँ
3: थोड़े कम जगह है सर, कूड़ा भी है, सुखा कर देगी।
2: कह देना की हो गई भैया सोयाबीन और उड़दा की बोनी अपनी।
3: क्या हो गई सर, 15 दिन की भई जा रही।
2: चलो सही समय है नींदा नाशक की लाने, और वैसे तो जानकारी अपने स्टूडियो में जैन साहब दे चुके हैं, लेकिन आपको भी विस्तार से जानकारी मिल रही है, सुनो ध्यान से।
0: भैया कितनी जगह में लगा है अपना सोयाबीन?
3: सर 3 एकड़ में भाव है।
0: 3 एकड़ में भाव है, और बीज दर जो है कितने किलोग्राम प्रति एकड़ है?
3: सर वो भाव तो अपन 50 किलो
0: एकड़ के हिसाब से
3: जी।
0: चलो ठीक है, वैरायटी
3: सर जो आप आकाशवाणी से सुना तो कौन किस्म जी है, कौन है कछु ले आए थे अपन?
0: अच्छा देखो, पहली बात तो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होना चाहिए। आपने बीज उपचार किया था?
3: किया था जी सर, वो दुकानदार ने दिया था बंडा दिया।
0: सबसे पहली बात तो अगर आपका बेगरा हो गया तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जो रिकमेंडेड मात्रा होती है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होती है, और इसके बाद आपने 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाई है, ठीक है। अब आप देखेंगे वो पिछले जब आपने खेती की होगी तब भी देखा होगा, जितना बेगरा रहता है, यदि गलती से भी बेगरा हो जाता है तो वो पौधा आप देखेंगे ज़्यादा मोटा होता है और ज़्यादा उसमें शाखाएं फैलती हैं, ठीक है। और यदि घना हो जाता है तो आप देखेंगे कि वो पौधा लंबा लंबा बढ़ता चला जाता है, और जो बहुत ज़्यादा घना होता है उनमें कीटों की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो बेगरा हो गया उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपका यदि 15 से 20 दिन की फसल हो गई है तो इस समय सबसे अच्छा समय है, आप उचित खरपतवार नाशक डालें। उसमें ध्यान रखें कि सकरी पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा हैं या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा हैं, उसके अनुसार आप खरपतवार नाशक का चयन करें, और कम से कम 150 लीटर पानी में 1 एकड़ का छिड़काव करें। जैसे ही ये खरपतवार आपकी ख़त्म होगी, ठीक है, तो पौधे और ज़्यादा वृद्धि करेंगे और अच्छा उत्पादन देंगे।
2: ठीक है सतपाल भैया,
3: बिल्कुल नीरज भैया धन्यवाद आपको इतनी अच्छी जानकारी दुआ के लाने।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहो आकाशवाणी सागर से।
3: नमस्कार।
2: किसान श्रोता भैया हरो, कार्यक्रम में आपकी समस्याओं के समाधान लगातार जारी है, ये बीच में समय है मनोरंजन को। एक बहुत ही प्यारो सो 12 मासी लोकगीत सुन रहे हैं अपन सभी जने, मनमोहन दीक्षित और इनके संगी साथियों को गाओ भाऊ।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: स्वागत कर रहे हैं साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में आपको।
1: जी सर, ग्राम मंजला गोलू हर और बात कर रहा है। सर
0: गोलू भैया का चल रहा है?
1: सर मूंगफली बड़ी होगी सर, कचड़ा है बहुत ज्यादा और दाबी हो में, और सर सोयाबीन मर रहा है, तो कोनो ऐसी उपचार बताओ के जो की मरे ने।
0: चलो बारी बारी से आपको समस्याओं को समाधान मिल रहा है। सोयाबीन की बोनी कितने दिन की हो गई?
1: 8 दिन हो गए सर।
0: चलो तो सबसे पहले तो आपको समाधान दे रहे हैं श्री विपिन जैन साहब, सुन लो ध्यान से।
2: उपचार काय से किया था आपने?
1: उपचार सर जो आता ना, जो पापा ले आए थे सर कोई पैकेट, वो हमें पता नहीं है, मगर उपचार करूँ तो जो तो है पता।
2: भैया नाम तो होगा क्या? जब तक अपन नाम नहीं बताएंगे तब तक क्लियर नहीं होता है, क्योंकि बाजार में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो स्पष्ट नहीं होता जब तक आप उनका नाम नहीं बताएंगे। क्या है, बीज उपचार में संपूर्ण बीज उपचार होता है, FIR पद्धति से तीनों का प्रयोग होता है, तो ये अपना संपूर्ण बीज उपचार कहला। अब ये और बता दें आप कि कितने दिन पहले बुवाई की थी?
0: 8-1 दिन हो गए बोनी।
1: 8 दिन हो गए सर।
2: अच्छा, इसके तुरंत बाद पानी गिरा था क्या?
1: नहीं सर, पानी तो नहीं गिरा, 2-3 दिन बाद गिरो तुम।
2: 2-3 दिन बाद गिरा था। और गहराई कितनी थी आपकी?
1: गहराई सर खुले बोर की करी थी सर बोनी,
2: अपनी पंजी लगा के।
1: हाँ
2: देखो, सबसे पहली बात तो क्या होता है किसान भाई, एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई भी अपन बीज लाते हैं चाहे वो घर का हो या बाहर का हो या बाजार का हो, ठीक है, एक तो अपन अनुशंसित जगह से लाए, बीज निगम से लाए, कृषि विज्ञान केंद्र से लाए या अन्य जगह से भी लाए, और यदि आप दुकानों से भी ला रहे हैं तो लाने के तुरंत बाद भाई बुवाई के कम आपको 10 दिन पहले बीज को लाना चाहिए। बीज बहुत महंगा आता है और यदि बीज ही सही ना रहे, सबसे पहले किसान भाई को क्या करना चाहिए, उनको आप बीज परीक्षण करना चाहिए। 75% यदि जर्मिनेशन होता है तो आपका बीज अच्छा है, इधर कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद आगे भी समस्या आती है, क्या है, वर्षा मौसम का सीजन रहता है, यदि आपकी गहरी बुवाई हो गई उस कारण से भी यदि दिक्कत होती है, और यदि बोनी के तुरंत बाद बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो जो सोयाबीन की फसल रहती है वो दब जाती है। ये 2 रीजन होते हैं जो मुख्यतः सोयाबीन की फसल में कम अंकुरण होता है उसका कारण रहता है। 8 दिन हो गए हैं, हो सकता है 1-2 दिन में और जो भी पौधे हैं और निकल जाएंगे। और खाद और बीज मिला के तो नहीं बोया था?
1: नहीं सर, खाद और बीज मिला के तो नहीं बोया था।
2: ठीक है, एक समस्या इसके कारण भी होती है, जब खाद और बीज अपन मिला के बोते हैं तो अब इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। यदि देख लें आपका अगर 60-70% भी जर्मिनेशन हुआ है, जो पौधे हों वो हो जाएंगे, उसके बाद सही समय पे खरपतवार नियंत्रण करें, ठीक है।
1: तेल को तो सर सही है जो है भी।
2: तो आप इसमें परेशान मत हो, इसको एक आप प्रैक्टिकल के तौर पे लें, ठीक है। क्या है, अभी आप फिर उसकी आप मतलब उसको बखन्नी करेंगे, बोनी करेंगे, इससे अपने खर्चे बढ़ते हैं, ठीक है। भैया जो मूंगफली की फसल है इसमें खरपतवार नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मूंगफली में दवाई का प्रयोग अपन को 20 से 25 दिन में करना है, ठीक है। इसमें आप इमेजा थापर दवाई का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। 300 से 400 ml दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को उपयोग करना है। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कम से कम 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा होना चाहिए, और पानी पर्याप्त मात्रा में हो, और कट नोजल का प्रयोग करना है दवाई डालते समय। और एक विशेष बात का ध्यान रखें किसान भाई, अगर कम जगह में आपने मूंगफली लगाई है तो कोशिश करें कि अपन डोरा या कुल्पा चला के या निदाई के माध्यम से भी अपन इसका खरपतवार नियंत्रण करें। अगर ज़्यादा जगह पे होता है तो खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन को दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए।
0: गोलू भैया ऐसे ही जुड़े रहने हैं आकाशवाणी सागर से।

0: मन लगा के खेती किसानी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
1: हेलो सर,
0: स्वागत कर रहे भैया आपको।
1: राम मिलन बोल रहे हमारे संग्रह सर।
0: राम मिलन भैया सुनाओ, क्या चल रहा है
1: सर? जो पुआनी करने दी कछु जुनार बाए सर जुन्नी।
0: हाँ,
1: और एक रकम जुन्नी बेदे कछु बाका गिलगी लगाई है और हमने मूंगफली की जान गई है, मूंगफली अब लगा सका सर।
0: अच्छा, मूंगफली लगाओ चाह रहे हो।
1: हाँ।
0: चलो, आपको उपयोगी सी जानकारी श्री विपिन जैन साहब दे रहे हैं, सुनो ध्यान से।
2: कितनी जगह में लगाना है भैया मूंगफली?
1: सर करीब 25 में।
2: देखो, वैसे तो सही समय जो रहता है 15 जून से 15 जुलाई रहता है, तो अभी वैसे लेट नहीं हुए हैं। अगर खेत की तैयारी हो गई है तो आप मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। सही समय है, 15 जुलाई तक आप बोनी कर सकते हैं। इसके बाद दीमक की समस्या है, तो इसके लिए क्लोरोपाइरीफास दवा रहती है, तो उस दवा को आप बोनी के साथ दे दें, ठीक है। यदि आप बीजोपचार कर रहे हैं तो अपना इंसेक्टिसाइड FIR, ठीक है, फंगिसाइड और डाइजोबियम कल्चर। यदि इंसेक्टिसाइड से अपन बीजोपचार करते हैं जिसमें इमीडा क्लोपिड है, तो शुरुआती अवस्था में जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनसे भी नियंत्रण होता है, दीमक वगैरह है उनसे भी नियंत्रण होता है।
1: सर एक महीना होगा और गिलकी हमारी चादर पत्ते हुई है अभी, तो पीरा बना रहा है, पत्ता सुखड़ रहे
2: हैं। पत्ता सुखड़ रहे हैं
1: जी सर।
2: जो पौधे लगाए हैं वो नाली के ऊपर लगाए हैं, ऐसे ही लगा दिए हैं?
1: नहीं सर, धारा क्षेत्र में तो नाली में लगे हैं।
2: ठीक है, सबसे पहले कोई भी फल सब्जी बरसात के समय में लगाते हैं तो किसान भाई को सबसे विशेष ध्यान रखना है कि जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए।
1: क्या हो? सर लेकिन पिछले खेत में लगाए थे नरवाई, थोड़ी सर उसमें थोड़ी कारण दीमक को तो नहीं है?
2: अगर दीमक का कारण होता तो पूरा पौधा सूख जाता। पत्ते सूखने की समस्या दीमक के कारण नहीं होती है। पत्ते सूखने की
1: अभी तो 25% पीलापन आया,
2: 25% पीलापन आया है, तो बहुत ध्यान से देखें, उसमें रस चूसक कीड़े लगे होंगे। तो 2-3 उपाय हैं जो अपन कर सकते हैं। सबसे पहला तो अपन बिना पैसों वाला उपाय, चिपचिपा प्रपंच जो आप देखते होंगे, पीले या नीले स्टिकर लगे रहते हैं, वो आप अपने खेत में लगा दें तो उड़ने वाले कीड़े उस पर चिपक जाते हैं। इसके बाद अगर आपको दिख रहे हैं उसमें, तो उसमें इमीडा क्लोपिड या थायमेथोक्सम दवा का अच्छे से स्प्रे कर दें, जिससे वो कीड़े नष्ट हो जाएंगे, तो ये पीलेपन की समस्या खत्म हो जाएगी।
0: ठीक है राम मिलन भैया।
1: ठीक है सर, जय राम जी की सब जनों।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राम मिलन भैया, ऐसे ही जुड़े रहने आकाशवाणी सागर से। आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
3: हेलो,
0: स्वागत कर रहे भैया आपको, और आपकी आवाज हम तक कम पहुंच रही है।
3: कुछ सर कार्यक्रम चल रहा है, हेलो किसान वाणी।
0: बिल्कुल चल रहा है, थोड़े से आप इतर उतर हो जाओ, तो हो जाओ, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ पहुँचे।
3: हाँ सर, अब आ रही।
0: हाँ अब आ रही है। अपनो परिचय सबसे पहले दो।
3: आपके नियमित श्रोता भागचंद साहू जी गोकुल ग्राम परसोन से।
0: भागचंद भैया परसोन से।
3: हाँ।
0: सुना भागचंद भैया, क्या चल रहा है?
3: ये कह रहे थे बरसात का मौसम चल रहा है।
0: हाँ।
3: तो पशुओं में अभी कौन कौन से रोग होने की संभावना है?
0: पशुओं में बरसात में कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनको बचाव अपन कैसे कर सकते हैं, ये विषय पे आपको जानकारी स्टूडियो में पधारे डॉक्टर बी के शर्मा दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से।
4: वर्तमान समय में सभी पशुपालकों से निवेदन है कि टीकाकरण शीघ्र करा लें। बारिश हो, गलघोंटू और जो हम बोलते हैं खुरपका मुंहपका, इसका टीकाकरण सभी पशुपालक निश्चित रूप से कराएं। और जहां तक बात है सबसे खतरनाक बीमारी या पशुपालन में बहुत नुकसानदेह बीमारी, तो उसमें नाम पहला नंबर पे आता है मैस्टाइटिस, जिसको हम बोलते हैं थनैला रोग। गाय के थनों में जो रोग होता है वो पशुपालक ऐसे देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में यदि इस रोग की पहचान हो जाती है तो इसका इलाज बहुत सरल है, वरना लेट जब हम हो जाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और पशु दूध का भी एक नुकसान होता है, पशु की जो बाजार मूल्य है वो भी घट जाता है और दवाओं पर भी काफ़ी खर्च करना पड़ता है। तो मैं पशुपालकों से बताना चाहूँगा कि मैस्टाइटिस रोग को जितने जल्दी पकड़ लिया जाए उतना ही ठीक होता है और कम दवा में इसका लाभ मिल जाता है। काउसाइड टेस्ट होता है, बहुत ही सामान्य सा टेस्ट है, गौशाला में भी हो सकता है। उसमें हम पशु का मिल्क 4 कटोरी में अलग अलग निकाल कर एक मैस्टाइटिस स्ट्रिप बाजार में उपलब्ध होती है, जिससे कि हम पशु के दूध का पीएच देख सकते हैं। पीएच से भी ये मालूम चल जाता है कि यदि पीएच बढ़ रहा है एल्कलाइन पीएच पे हम जा रहे हैं एसिडिक से, तो ये मैस्टाइटिस रोग का लक्षण हो सकता है। यदि हम इस रोग से मुक्ति पा गए तो देखो जब दवाएं शुरू होती हैं तो इस रोग पर जितना खर्च आता है वो तो अलग है, और पशुओं पर जो दूध का नुकसान होता है, दूध घट जाता है।

0: धन्यवाद।
1: एक बार फिर कार्यक्रम में मनोरंजन के लाने अपन तनक ठहर रहे हैं। मैयारो एक बहुत ही प्यारो सो वर्षा लोकगीत केशव प्रसाद सुल्लेरी को गाओ भाव अपन सभी जने सुन रहे हैं।

0: हेलो
1: हेलो किसान वाणी सर,
0: बिल्कुल सही जगह फोन लगो है। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम
1: जी सर, गंधर्व राजपूत ग्राम हिंदोन राजघाट से बोल रहे सर।
0: गंधर्व भैया सुनाओ, क्या समस्या है?
1: समस्या सर, नीबुआ के पेड़ है सर जी।
0: हाँ,
1: तो उन्हें सूख रही सर, कलम कर सकते हैं क्या करें सर जी?
0: बिल्कुल, इस समय पे नीबुआ में का कार्य अभी करे जा सकते हैं, विषय की जानकारी स्टूडियो में पधारे श्री विपिन जैन साहब दे रहे हैं। सुनो ध्यान से।
2: ठीक है, डायबैग बीमारी भी रहती है। अब सबसे बड़ी बात आप ये बताएं, नींबू के पौधे को खाद एवं उर्वरक कब से नहीं दिए?
1: नहीं दिए सर, मुद के दिन से
2: कि सालों से?
1: सर, नहीं सर, दिया ही नहीं अभी उसको।
2: कितने वर्ष का हो गया है नींबू?
1: 3 साल का होगा सर।
2: भैया, इंसान हो, मशीन हो, पौधे हो,
0: पोषण सबको जरूरी है।
2: ठीक है भाई, जैसे गर्मियों में नींबू तो पर्याप्त लिए ना आपने?
1: जी सर, फरो तो इस साल
2: आपको वृक्ष ने बढ़िया फल दिए। अब अपना भी कर्तव्य है, सिर्फ उनकी टोने काटने से काम नहीं चलेगा, वो तो एक प्राथमिक उपचार है। क्या होता है, एक बीमारी भी आती है, और जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है पौधों में, तो वो भी अपने जो टोने रहती हैं वो अपने पोषक तत्व जड़ों या मध्य भाग में लेने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो टोने काट दें, और उसमें नीला थोता जो रहता है वो दवाई लगा दें। अब दूसरी बात, जितना पौधा है चारों तरफ छाया बन रही है, उसके चारों तरफ की 1 फुट की मिट्टी निकाल दें, धूप हवा पानी सब लगे, और अच्छी सड़ी गोबर की खाद 1 हफ्ते बाद उसमें भर दें, और उसमें कम से कम 50-50 ग्राम DAP, यूरिया या पोटास, ये वाली मात्रा आप उसमें डाल दें, जिससे ये समस्या नहीं आएगी।
0: ठीक है गंधर्व भैया।
1: जी सर, जय राम जी सर।
0: ऐसे ही जुड़े रहने हैं आकाशवाणी सागर से, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हरो जो हतो आज को अपनो साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी, आज के अपने कार्यक्रम में आप किसान भैया हरों की

0: खेती किसानी पशुपालन बागवानी की समस्याओं के समाधान के लाने श्री विपिन जैन साहब पधारित जो BTM है आत्मा परियोजना कृषि विभाग सागर में डॉक्टर BK शर्मा जो कि पशु चिकित्सक हैं जिला पशु चिकित्सालय सागर में पधारित आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज के अपने एक कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे विनोद यादव कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन रहो दीपक निषाद को आप किसान श्रोता भैयारों से बुंदेली में बतकाव कर रहे थे हम नीरज सोनी अब ले रहे हैं सभी किसान श्रोता भैयारों से आज्ञा कह रहे हैं जयराम जी की।
1: तो भैयारों अपन सुन रहे थे अपना जो साप्ताहिक क्रम है हेलो किसान वाणी वो और देखो नीरज भैया अब चलवे की हो रही है बीरा मन ओके पहले आज के जो मंडी भाव हैं भी अपन बता दिए थे।
0: बिल्कुल संतोष भैया किसान भैया रो नाज मंडी में आज गेहूं को औसत भाव 2400 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल रहो चना 5200 रुपये से 5500 रुपये प्रति क्विंटल रहो सोयाबीन 6500 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल रहो मसूर को भाव 6000 रुपये से 9000 रुपये प्रति क्विंटल उर्दा 3000 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल राई सरसों को भाव 5500 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल और बटरी को सागर नाज मंडी में औसत भाव रहो 3000 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल।
1: तो जे तो हते आज की मंडी के भाव और मौसम को हाल हम बताए दी थे। तो आज को अधिकतम तापमान है तो 29.8 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 2 डिग्री कम है तो न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो वो है तो भैया 23.4 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 1 डिग्री कम है तो आर्द्रता की बात करें तो सवेरे की हती भैया 97%, संजावरिया की हती 77%।
0: बिल्कुल और किसान भैया रो आज्ञा लेवे की पहले आकाशवाणी सागर से जुड़े रहने हैं आप सभी जनों को कार्यक्रम किसान वाणी सुनत रहने हैं और अब आज को किसान वाणी कार्यक्रम होगा इतना संपन्न सो सभी जनों से ले रहे हैं आज्ञा और कह रहे हैं
1: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अरे सुन तो
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है।
4: हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
2: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर

FM 102.6 MHz पर अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी पर केंद्रित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं और वक्त है चित्रपट संगीत का। स्वीकार करें इस कार्यक्रम में अपने दोस्त जयशेखर का प्यार भरा नमस्कार।

सुनिए पहले गीत में अभिजीत और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है जतिन ललित का।

अब सुनते हैं, प्यार तो होना ही था। इस फिल्म में कुमार सानू को

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये सफर बस यहीं तक। FM 102.6 MHz पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं संगीत सरिता। शुरुआत करते हैं जगजीत और चित्रा सिंह के साथ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

संगीत सरिता का ये सफर बस यहीं तक। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। करें थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल

0: मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बजे हैं और अब वक्त है मन चाहे गीतों का। स्वीकार करें इस कार्यक्रम में अपने दोस्त जय शेखर का प्यार भरा नमस्कार। और सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत, फिल्म का नाम है नमस्ते लंदन। आवाज राहत फतेह अली खान की और जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है हिमेश रेशमिया का। फरमाइश आप सभी की पूर्व्याहु काली तिगड्डा सागर से श्याम रेकवार, लक्ष्मी विक्रम वंदना विराज बादल विजय कीर्तिका भूमिका टक्कू दक्ष रेकवार और इनके बहुत सारे साथी। यहीं से कमलेश चुटेले, राकेश नीलू सोनू और इनके बहुत सारे साथी। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक अहमद शाकिर अलकमा खत्री अलतमश खत्री रमेश गौड़ और शादाब खत्री। भटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा मनजीत कौर करणवीर करण दपिंदर वरिंदर सिमरन और इनके बहुत सारे साथी। सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है ऊंचे लोग, अनजान की शब्द रचना, संगीत आर डी बर्मन का है और आवाजें सलमान आगा के साथ किशोर कुमार की। फरमाइश नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, शिवा, शिवांशु, अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश, सुजीत और रमाकांत। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेक बिरक, मीका बिरक, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान, धर्मेंद्र जितेंद्र मालाकार, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य शिवानी और मीनू राजा श्रीमाली, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, साकिब हसनैन, शंकरलाल गंगराड़े, वनीता और इनके बहुत सारे साथी। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से मन चाहे गीत। अभी तक जो फरमाइशें आपने सुनी वो थी खतों के माध्यम से, और अब हम लेते हैं व्हाट्सएप की फरमाइश। ये फरमाइश हमें मिली है सागर से राजेश मनवानी, शंकर सचदेव, अनिल गंगवानी, सपना, चंपक भाई जैन, निर्मल भोले, बजाज रूपेश और सीमा, महक, अंजलि, भूमि, बरखा, प्रियंका। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। ये व्हाट्सएप हमें मिली है मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर की। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर नसीब फिल्म में डॉक्टर कमलेश अवस्थी, सुमन कल्याणपुर और साथियों को। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ग्राम बिनेका तहसील बंडा जिला सागर से बलराम सेन, अरविंद, रेखा, रविंद्र, संगीता, महेंद्र, रामदेवी, सुरेंद्र, नंदिनी, रिया, गौरव, राज, आर्यन, कौशल और दीप्ति सेन। इसी गीत को सुनना चाहा है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन और इनके बहुत सारे साथी, पुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, बड़गुवा पथरिया से छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु, माधुरी और वर्षा। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर महेंद्र कपूर को फिल्म निकाह में, हसन कमाल के बोल, संगीत रवि का है।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: सफर बस यहीं तक। FM 102.6 MHz पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 बजने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। करें थोड़ा सा इंतजार।
1: यह है विविध भारती। यह है विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा। इस अंतराल के बाद होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार एक ऐसे फिल्म जगत के हर फन मौला कलाकार को लिए हुए है जिसने हीरो से लेकर खलनायक तक, चरित्र अभिनेता से लेकर हास्य भूमिकाओं तक, जवां से लेकर प्रौढ़ावस्था के अभिनय का सफर बड़ी ही जीवंतता से तय किया, जिनकी प्रतिभा का लोहा फिल्म जगत से जुड़े लोगों से लेकर दर्शकों तक सभी मानते रहे हैं, मानते हैं।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
2: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

संजीव कुमार एक सफल अभिनेता के रूप में चिन्हे जाते हैं। कई प्रतिष्ठित अभिनय के पुरस्कारों के साथ संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म थी कोशिश और

संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई को सूरत में हुआ। इनका मूल नाम हरिहर जरीवाला था। अपने फिल्मी नाम संजीव कुमार से इन्हें शोहरत मिली। थिएटर में अभिनय के साथ साथ फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से अभिनय की पढ़ाई के पश्चात संजीव कुमार को फिल्मालय की 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में पहला छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1964 में जॉय मुखर्जी और सायरा बानो स्टारर आओ प्यार करे में संजीव कुमार ने एक छोटा सा और किरदार निभाया। संजीव कुमार की पहली नायक के रूप में फिल्म थी 1965 की निशान।

0: देखा जाए तो पर्दे के माध्यम से संजीव कुमार को 1968 की फिल्म मिली संघर्ष, जो एचएस रावल की फिल्म थी, और ये महाश्वेता देवी की कहानी का फिल्मी रूपांतरण था। संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के साथ पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
1: तुम कुंदन हो ना?
2: हाँ, तुम कौन हो? यहाँ अंदर कैसे आ गए?
1: द्वार खुल गए स्वागत के लिए। नौबत लाल का बेटा हूँ।
3: द्वारका?
2: अरे भाई, तुम कब आए? कब आए?
1: कुछ देर पहले।
2: काफी आ गए, हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। बोले भाई, जहाँ ठहराए गए वहाँ कोई?
1: पूरा आराम है, सिर्फ एक मुश्किल है, शराब हम अकेले कैसे?
2: ये कैसे हो सकता है? हम साथ देंगे, मैं भी बैठक का इंतजाम करा देता हूँ।
1: इंतजाम हो चुका है अमर सर।
2: वो नहीं होगा, पहली बार यहाँ आयो, पहली बैठक हमारे ही घर होनी चाहिए। क्यों?
1: दुश्मन के साथ जाते हुए डर लगता?
2: नहीं, दुश्मन का डर नहीं, मुझे मेहमान का ख्याल था। आओ मेरे साथ।
1: घोड़े का ढाई बचो।
3: बड़े शातिर हो भाई, अच्छी चालें चलते हो।
1: वो चाल चलने वाला हूँ कि बचना मुश्किल होगा, बस देखते जाओ मेरे प्यारे किस तरह घेरते हैं तुम्हें।
0: 1968 में ही ऋषिकेश मुखर्जी की आशीर्वाद में इन्होंने एक अहम किरदार निभाया था। संजीव कुमार को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिलवाया था इसी फिल्म ने। इसी साल आशा पारेख और धर्मेंद्र स्टारर शिकार फिल्म आपने की। इस फिल्म में संजीव कुमार ने एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। अब संजीव कुमार को फिल्मों में लीड रोल मिलने शुरू हो चुके थे। बात 1970 की फिल्म खिलौना की है। यही वो फिल्म है जिसने संजीव कुमार को एक स्टार बनाया। इस फिल्म में एक दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति का किरदार बड़े ही विश्वसनीय ढंग से संजीव कुमार ने निभाया था।
4: हजरात, आज के इस मुशायरे में हमने बड़ी मुश्किल से मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब को यहाँ बुलाया है।
5: जी हाँ, जल्द से।
4: अब मैं मीर साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। आइए मीर साहब।
5: ओह, आइए
4: आइए आइए आइए आइए मीर साहब, आइए आइए।

0: अशुका है जा धर में बैठा, अब का तर्क इस्लाम किया।
1: सुभान अल्लाह, मिसाल सुभान अल्लाह। ए शायरी के खुदा, तूने बिल्कुल सच कहा है, ये दुनिया मोहब्बत की है। शायर मंदिर में गुजारो, चाहे मस्जिद।

सन 1970 वो साल है जब दस्तक फिल्म के जरिए इन्होंने अपनी प्रतिभा का जानदार प्रदर्शन किया था। पति पत्नी के रिश्तों पर बनी इस फिल्म में इनके साथ थी रेहाना सुल्तान। ये वही किरदार थे जिसके लिए दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान

1971 की अनुभव, 1972 की सीता और गीता और 1973 की मनचली, इन फिल्मों ने संजीव कुमार के अभिनय के सफर को सुहाना किया।

सन 1972 की परिचय और इसी वर्ष की फिल्म कोशिश ने इन्हें दूसरा फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और अभिनेता के रूप में एक सम्मान दिलवाया। इन फिल्मों के निर्देशक थे गुलजार। अभिव्यक्ति और अभिनय का सर्वोच्च शिखर छू लेता है संजीव कुमार का यह अभिनय।

कहना ना होगा कि गुलजार और संजीव कुमार के साथ ने हिंदी फिल्म दर्शकों को बेहतरीन फिल्मों के तोहफे दिए हैं। 1975 की आंधी, 1975 की ही मौसम और 1981 की अंगूर और 1982 की नमकीन ऐसी ही उम्दा फिल्में हैं।

संजीव कुमार के बोलने का अंदाज और किरदार को पूरी तरह से समझकर पर्दे पर उसे जिंदा करने की कला के सभी सिने प्रेमी कायल रहे हैं। संजीव कुमार ने पर्दे पर अपनी स्वयं की छवि से ज्यादा किरदार की छवि, उम्र और अनुभव का ख्याल रखा। तभी संजीव ने कई फिल्मों में अपनी उम्र से अधिक यानी बुजुर्ग भूमिकाओं को भी सहर्ष स्वीकार किया और उनके परफॉर्मेंस के बाद जिसने भी उन्हें पर्दे पर देखा, सराहा और पसंद किया। ऐसी ही फिल्में हैं जिसमें फिल्मों के हीरो की छवि को तोड़ते हुए कैरेक्टर की उम्र को पर्दे पर बड़ी ही सहजता और सफलता से आपने पर्दे पर उतारा है, जैसे फिल्म आंधी, मौसम, शोले, त्रिशूल और अब शोले फिल्म को ही ले लेते हैं। इस फिल्म में संजीव कुमार जया भादुड़ी के ससुर बने, जबकि कोशिश और अनामिका में जया जी इनकी नाई।

सहज सरल और हास्य प्रधान फिल्मों में भी संजीव कुमार खूब जचे, जैसे मनचली, मनोरंजन, पति पत्नी और वो, अंगूर, लाखों की बात, और हाँ 1974 की फिल्म नया दिन नई रात में तो इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती और दक्षता से अनेक किरदारों को एक ही फिल्म में अदा कर दिया, जो इनकी अभिनय क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा का जीता जागता उदाहरण है।

1977 में संजीव कुमार को महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने पहली बार बंगाल के बाहर बनने वाली अपनी फिल्म में, जो कि फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी, इस फिल्म में मुख्य भूमिका प्रदान की, जो संजीव कुमार की अभिनय क्षेत्र में प्रतिष्ठा और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। शोले फिल्म के ठाकुर के रोल के लिए संजीव कुमार पहली पसंद नहीं थे, क्या ये आपको पता है? बल्कि पसंद पहली थे धर्मेंद्र, क्योंकि धर्मेंद्र स्वयं वो भूमिका करना चाहते थे, पर निर्देशक रमेश सिप्पी के कहने पर धर्मेंद्र ने वीरू का प्रसिद्ध रोल किया और संजीव कुमार ने अविस्मरणीय ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका अदा की। सन 1976 की फिल्म आंधी और 1977 की अर्जुन पंडित के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला था। अपने एक इंटरव्यू में संजीव कुमार ने अपने सबसे पसंदीदा प्रदर्शन के बारे में बताते हुए कहा था कि कोशिश फिल्म में मेरे पास बोलने के संवाद नहीं थे, ना ही कोई कैमरे की पोजीशन ऐसी थी जिससे मेरे प्रदर्शन में कोई विशेष मदद मिलती। वो एक संपूर्ण रूप से एक कलाकार का दृश्य था। सामान्य रूप से इस तरह के दृश्य करने में बड़ी कठिनाई होती है जब निर्देशक पूरी तरह कलाकार पर निर्भर हो। अगर ये असफल होता तो किसी और की असफलता नहीं बल्कि मेरी ही असफलता गिनी जाती, पर मैं गुलजार साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये दृश्य दिया जिसने मेरे अंदर आत्मविश्वास को जागृत किया। गौरतलब है कि संजीव कुमार खाने के बहुत शौकीन थे। अक्सर या तो वो अपने घर पर ही पार्टियां देते थे या फिर अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेस के द्वारा दी गई पार्टियों में बड़े ही शौक से सम्मिलित हुआ करते थे। हरिहर जरीवाला यानी संजीव कुमार ने अपनी गुजराती मीडियम से हो रही पढ़ाई अधूरी छोड़ बॉम्बे के इंडियन नेशनल थिएटर को ज्वाइन किया था। संजीव कुमार लेखक निर्देशक पी डी शिनॉय के शिष्य रहे। ये निर्माता निर्देशक और लेखक सावन कुमार

पैरों में लिपटी पाजीब को देखकर रश्क होता है। ये खनक बेबस ही दिल को धड़का जाती है। माथे की बिंदिया, ये नूर जो बातों से भी छलक जाता है। क्या कहूँ, कितना बेबस दिल को किया जाता है। उठकर तेरी बज्म से जाएं तो अब कहाँ, दिल ने तड़प कर तड़पाया सरे महफिल मुझे।

चंद्रमाको दिनके उजाले से क्या वास्ता, रातों के अंधेरे में जो जला करती है। मोहब्बत की रवायतों को सीने में छुपाए, खामोशी से प्यार का इजहार किया करती है। कभी सोचते हैं क्यों परवाने शमा से जुदा हो न सके, चांद सितारों की रोशनी में फना हो न सके।

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। क्या कहूँ, जख्म दिल के हैं मेहरबानी आपकी, दर्द दिल भी है एक निशानी आपकी, वफा दिल से ज्यादा आपसे की है, चमन के फूलों की हाँ हमने भी आरजू की है, हसरतों की बंदिशें अब जाने भी दो, दिल की सदा मोहब्बत की दीवारों से टकराने भी दो।

कभी तुमने बुलाया नहीं, कभी हम पास आए नहीं। रात मोहब्बत की धड़कनों को सुनती है, बारह दिल में शबनम की तरह बरसती है। क्या कीजिए शिकवा दूरी का, मिलना भी गजब हो जाता है। जब सामने वो आ जाते हैं, एहसास से अदब हो जाता है।

अपना दिल की जलाकर चिरागों को बुझा दीजिए, ये अफसाना मोहब्बत का अब फूलों को सुना दीजिए। कह दीजिए कि रात ढलने को है, सितारे शब के दामन में मुस्कुराने को हैं, ये नजारे फिर मुस्कुराएंगे, कैद भंवरे जो फूलों में हो जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियो को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net-zero goals." Prime Minister Narendra Modi today said, "India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of Grow More, Achieve More." Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
1: इसी सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम